सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: ना मेरे लिए लिखते, ना दुनिया के लिए लिखते, ना मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास। बिंदास मॉर्निंग।

Beautiful rendition of O Meri Laila from the movie Laila Majnoon Ali on Radio Ala 106.3 FM. Danisha Aghir ji aapke saath Bidas mornings lekar. A very good morning, Meri Jaan. Tuesday, September 8th. Aaj ka din bahut khaas hai. Kyun? क्योंकि आज है बर्थ एनिवर्सरी उस लेजेंडरी सिंगर की जिन्होंने हमें इतनी खूबसूरत यादें दी हैं उनके गानों के रूप में जो हम आई थिंक जनरेशंस तक एंजॉय करने वाले हैं. और आज पूरा दिन आप हर घंटे आशा ताई के स्पेशल गाने सुनने वाले हैं. जी हाँ, आशा भोसले जी की बर्थ एनिवर्सरी है आज. सैडली वी लॉस्ट हर वेरी सून आई वुड से, बिकॉज यार ये जो लेगेसी है ना ये कंटिन्यू रहेगी, ये कहीं नहीं जा रही है. हाँ जी, तो उनका जो खूबसूरत और कमाल काम उन्होंने किया है और हमें जो ये खूबसूरत गानों का तोहफा दिया है वो आज हम पूरा दिन एंजॉय करने वाले हैं. लेकिन शुरुआत करेंगे किससे? आपके मैसेजेस से. तो आ जाइए फटाफट से मुझे गुड मॉर्निंग भेज दीजिए 3311 1063 पर.

0: बॉम्बे जयश्री की आवाज में ये और ये खूबसूरत गाना भी आ रहा है।
1: दीवाना हुआ बादल।
0: और भी बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, आशा है कि कमाल कमाल के गाने आपको सुनने को मिलेंगे। अगर कोई आपका स्पेशल फेवरेट हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए प्ले कर सकूं। सुनते रहिए रेडियो 106.3 FM, जियो बिंदास मेरी जान।

0: Ready?
1: Ready!
0: To learn!
1: Yes!
0: To play!
1: Absolutely!
0: To grow!
1: With Maserati!
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
1: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
2: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
3: सलाम प्रणाम नमस्कार वणक्कम मैं हूं जैकी श्रॉफ
4: रेडियो
3: 106.3
5: Olive Sono Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: Arijit Singh ki awaaz mein lavish, beautiful track only on Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, aapki sad bindas morning chal rahe hain yahan par. And we've got a few messages over here. So, Santu ji ka message aaya hai. Good morning. It's time to rise and shine. Put a smile on your face and get your day started. Remember, you are in control of your day. Make it. Jio Bindas, Harpal Sandhu from the Consecrit. Indeed, as I always say, ki subah uth rahe ho na, to bas yahi sochna hai ki, bhai, aaj ka din to kamaal hai. Mujhe aaj apna goal achieve karne se, or you know, all those amazing things I have planned in my head, wo karne se koi nahi rok sakta. And then you will see ki koi nahi rok paega. आपके अलावा ना आपको कोई नहीं रोक रहा है. सेम अप्लाइज टू मी. अगर मुझे कुछ करना है और मैं वो नहीं कर पा रही हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से है और किसी की वजह से नहीं. एंड शशिकांत पाटिल जी का भी मैसेज आया है यहाँ पे. गुड मॉर्निंग, अप्रिशिएट दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग, फील द डिवाइन प्रेजेंस, बी जॉयफुल. या इट्स अ बेटर मॉर्निंग दो. अभी लाइक जब मैं घर से निकली गाड़ी में बैठने के लिए तो इतना ज़्यादा गर्म नहीं लग रहा था जितना कल क्रेजी इवनिंग में तो क्रेजी हो गया था भाई साहब. And Zulfi ji ka bhi message aaya hai. Good morning. Situation, time and people, these three things teach better lessons than a book. Indeed. But the trick is to use those lessons, to practice those lessons in your life while moving further. And yahan pe mujhe Manal ji ka bhi good morning aaya. Good morning ji. Kaise hai? Kya hal chal hai? I hope you guys are having an amazing morning. Aur main usko aur behtar bana rahi hu kyunki khoobsurat gaane. Oh ho ho. फिलहाल जो मैं कूल सॉन्ग ऑफ द आवर आपके लिए भेज रही हूँ आशा ताई और जगजीत सिंह साहब की आवाज़ में, जब सामने तुम आ जाते हो. बड़ा ही सुंदर गाना है. आशा ताई की बर्थ एनिवर्सरी पर आज पूरा दिन हर घंटे आप खूबसूरत खूबसूरत आशा भोसले के गाने सुनने वाले हैं. अगर आपका कोई फेवरेट है तो मुझे जरूर बताइएगा. आई ट्राई टू प्ले दैट फॉर यू. स्टे ट्यून ऑन जियो बिंदास. रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
1: बात है सर, क्या पर ये बात है.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: From vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट prices पर सिर्फ Nesto Hypermarket में groceries हो fresh food हो या daily essentials सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी profitable Nesto Hypermarket 152nd branch now open in Old Passport Office Algarafa

0: तनिषा
1: तनिषा रहना है तेरे दिल में मूवी से बॉम्बे जयशु की आवाज में जरा जरा खूबसूरत गाना एंड व्हाट अ मूवी यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर सो इस वक्त मैं कुछ ना कुछ मोटिवेशनल लेकर आती हूँ आपके लिए आज भी लेकर आई हूँ डोंट वरी लेकिन आज का मोटिवेशन मैं नहीं आशा ताई के लफ्जों में सुने
2: मुझे लगता है हर चीज जमाने के साथ चलने से ये अगर छोड़ दे कि हम वो जमाने के हैं उस वक्त ऐसा होता था वैसा होता था ये अगर दिमाग से निकाल दे तो इंसान सुखी हो जाता है नहीं तो हर वक्त अटका रहता है कि अरे वो ऐसा था आज नहीं है कल अच्छा खाना मिलता था आज नहीं है जो है वो खाइए ना जो गाना सुन रहे हो सुनिए और जो आ रहा है काम कीजिए एंजॉय करना चाहिए उस गाने को भी उस वक्त को भी नए जमाने को नए बच्चों को उनके साथ मिक्स हो जाइए जैसे दादी अपने पोतों के साथ मिक्स होके कैसे चलती है वैसे बदलना चाहिए आजकल के जमाने के साथ चलना चाहिए अब जवानी से बुढ़ापा आता है कि अटक के रहेंगे कि हम जवान थे वैसे ही चलते जाना चाहिए
1: ब्यूटिफुल राइट कितने आसान शब्दों में बता दिया कि ठीक है देयर आर सम बिलीव्स यू यूज्ड टू हैव बट नाउ द वर्ल्ड हैज इवॉल्व्ड और आपको भी उसके साथ इवॉल्व होना पड़ेगा आपके बिलीव्स को यू नो आपका जो एक परसेप्शन है टुवर्ड्स थिंग उसको भी इवॉल्व होना पड़ेगा जमाने के साथ साथ तभी तो आगे बढ़ पाएंगे वरना तो अटके ही रहेंगे यार तब आशिता की बात तो माननी पड़ेगी राइट सो प्रैक्टिस दिस इन योर लाइफ फिलहाल भेज रही हूँ आशा भोसले स्पेशल मेरा कुछ सामान आई एब्सोल्युटली लव दिस ट्रैक इजाजत मूवी से जब इसे लिखा जा रहा था इट वॉज बेसिक कॉन्वर्सेशन कि मेरा कुछ सामान आपके पास पड़ा है प्लीज मुझे लौटा दो दिस वॉज हाउ द सॉन्ग वॉज रिटन एंड द डायरेक्टर वॉज सो नॉट कन्विंस्ड उनका कहना था कि ये क्या है ये तो कॉन्वर्सेशन है कुछ लिरिक्स नहीं है ये पोएटिक नहीं साउंड कर रहे हैं बट जब आशा ताई ने इसे गाया आप खुद ही एक्सपीरियंस कर लीजिए यार 1940s की सादगी से लेकर 70s के रेट्रो रेवोल्यूशन तक मॉडर्न पॉप सॉन्ग्स के स्वैग से हिंदी सिनेमा के कल्ट क्लासिक्स तक वक्त बदलता रहा पर एक आवाज हमेशा सबसे आगे रही
3: जवान ने जान ने मन
1: आशा ताई की आज आशा भोसले जी की बर्थ एनिवर्सरी पर सुनिए उनके सुपरहिट गाने ओनली ऑन रेडियो

अमरिंदर गिल की आवाज में लकीरा, क्या हार्ट ब्रेकिंग गाना है यार. व्हेन यू गेट टू नो दैट यू वांट समबडी सो डेस्परेटली इन योर लाइफ एंड यू गेट टू नो कि नहीं हो पाएगा ये तो, बट जिस सादगी से अमरिंदर गिल ने उसे गाया है, ओ हो, उस हार्ट ब्रेक के साथ एक सुकून भी दे जाती है इनकी आवाज. नहीं, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 FM, तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. रेडियो ऑलिव प्रेजेंट्स ब्लैक बोर्ड स्टोरीज. और आज का मेरा सवाल ब्लैकबोर्ड स्टोरीज का है, व्हाट इज ऑलवेज कमिंग बट नेवर अराइव्स. ऐसी क्या चीज है जो कि हमेशा आ रहा होता है पर आता नहीं. इट इज अ बिट ट्रिकी. ओके, इट इज अबाउट डेज. इतना हिंट दे देती हूँ. व्हाट इज ऑलवेज कमिंग बट नेवर अराइव्स. हिंदी में एक सेइंग है कि ये तो कभी नहीं आता. इट इज अबाउट डेज. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, What is always coming but never arrives. 3311 1063 पर मैसेज कीजिए मुझे और बताइए. और सुधरी रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास.

0: खास मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: हर्षदीप कौर और अरिजीत सिंह की आवाज में कबीरा ब्यूटीफुल ट्रैक ऑन योर रेडियो 106.3 एफएम. तनिषा आपके सैड बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं. पर रेडियो ऑलिव प्रेजेंट्स ब्लैक बोर्ड स्टोरीज. सो ब्लैक बोर्ड स्टोरीज का सवाल आई थिंक आज थोड़ा डिफिकल्ट हो गया यार. मैंने हिंट भी दिया था, शायद क्लियर नहीं हुआ. So the question was, what is always coming but never arrives? And I said ki it is about days. So, agar hum, you know, like it's Saturday tomorrow or Sunday tomorrow, not Sunday. Yahan pe weekend Sunday nahi hota hai. Ab main hamesha is cheez mein na kho jati hu jab bhi baat kar rahi hoti hu weekend ki. So, okay, say it is Friday tomorrow and then ab Sunday school jana hai seedha. And then you tell your mom, homework mila hai, ki arre mamma baad mein kar lunga ya kar lungi. Kab? Kal. Kal, which never, which is always coming, but it never arrives. Because then, जब वो कल आ जाता है, तो फिर हम दूसरे कल का वेट कर रहे होते हैं. Are you getting it? Because मैं खुद बोलते हुए confused हो रही हूँ इस वक्त. But it makes a lot of sense in my head right now. What is always coming but never arrives is tomorrow, मेरी जान. But yeah, there are only very few answers. जो कि सिर्फ तीन लोग हैं जिन्होंने मुझे correct answer दिया है. वो है एक तो MD साहब. उनका नाम MD है. सर प्लीज अपना फुल नाम भेजिएगा मुझे. एंड साथ में मुझे राहा का मैसेज आया है. रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट लिसनिंग टू मी राइट नाउ और व्हाट? वेल राहा इज देयर एंड देन देयर इज सम नेम रिटन इन अरेबिक विच आई सैडली कैन नॉट रीड. आई एम ट्राइंग. ओके आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी अरेबिक सीखने की, बट फेलिंग मिजरेबली मेरी जान.
1: तू कखदा नी सानू तकदे जीनू ओ तकदा नी सानू.
0: आई डू नॉट हैव वर्ड्स फॉर ज़ीशान अली साहब. मतलब मैंने सुनना इन्हें शुरू किया था इनके सादगी वाले कवर से और बस मैं हुक्ड हूँ. ये कोई भी गाना ले आए. नाउ देर इज दिस न्यू ट्रैक ऑफ हिज बांधे जुल्फों पे. ओके सो वो गाना काफ़ी पहले आया था. जिस तरह से रांझिया जो जैन सोहेब का था वो काफ़ी वक्त पहले आया था, लाइक आई थिंक 2 or 3 years ago. वो मैं तब से सुन रही हूँ. नाउ दे हैव कम अप विद द वीडियो, तो इंस्टाग्राम पर ये गाने क्रेजी वायरल हो रहे हैं. एंड आई फील सैड कि भाई मैं गेट कीप कर रही थी यार, मुझे नहीं बताना था किसी को इसके बारे में. अगर थोड़ा सा भी लो फील कर रहे हो तो ये आपकी एनर्जी डेफिनेटली बूस्ट कर देगा.

0: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: गजलों की गहराई हो या बॉलीवुड के गानों का बेहिसाब चुलबुलापन, आशा जी ने जिंदगी के हर रंग को अपनी आवाज से सजाया है। तो आइए आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर रेडियो ऑलिव पर सुनते हैं आशा ताई की जिंदगी की कहानी उन्हीं की जुबानी।
2: अपना दुख तो कोई लेता नहीं, मुझे बुखार है आप नहीं ले सकती, मुझे सहना है। तो ये सहने की जो चीज है वो बहुत अच्छी चीज है। लोगों में जाके आप हंसिए, दूसरों को हंसाइए, खुश रहिए, तो सब आपको प्यार करते हैं। और आप दूसरे के काम आइए, दूसरे की इज्जत कीजिए। दूसरे इज्जत करना बहुत अच्छा, टाइम पे जाना अच्छा, गरीबों का हाल पूछना अच्छा, उसे मदद करनी अच्छी। वो दुनिया में मुझे लगता है इससे सुख कुछ नहीं है।
1: रेडियो ऑलिव के साथ लेट्स सेलिब्रेट द टाइमलेस इमोशन, लेट्स रिलिव द मैजिक दैट शेप जनरेशंस।
0: हर सुबह 6 से 10 हर जिस निशा को बिंदास मॉर्निंग में।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
4: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Denisha. Denisha.
1: दुरेंद्र मूवी से सिमरन चौधरी की आवाज में लुट लग गया ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहां पर ये वेदर भी हमारी सारी एनर्जी लूट के ले जाएगा सो आई एम टेलिंग यू बाहर नहीं निकलने का आज सो राइट नाउ इट इज 37 डिग्रीज फील्स लाइक 38 ओके रियलिस्टिक लेकिन आज जो हीट है वो बहुत डेंजरस और बहुत ज़्यादा यू नो स्ट्रांग होने वाली है सो जितना हो सके इंडोर ही रहिए स्पेशली इन द आफ्टरनून एंड अर्ली इवनिंग क्योंकि क्रेजी यस्टरडे व्हेन आई वेंट ना लाइक इन द आफ्टरनून मैं इसे हमारे ऑफिस के सामने एक सुपर मार्केट है वहाँ पर मैं कुछ लेने के लिए गई थी अपना एक प्रोटीन बार लेने के लिए एंड तब निकली तो इट वॉज नॉट रियली अमेजिंग बट इट वॉज बेरेबल शाम को जब मैं घर गई हूँ और जब मैं बस इसे कार से निकल के घर के अंदर घुस रही हूँ इतनी देर में बैंड बज गई भाई साहब नहीं बिल्कुल बाहर रहने का मन नहीं था मेरा पर देन यू नो यू हैव टू डू थिंग्स सो यू हैव टू गो आउट बट स्टिल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ खूब सारा पानी पीजिए स्टे हाइड्रेटेड और कहीं जा रहे हैं तो अपने साथ पानी हमेशा रखिए यू नो पानी इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक वॉट एवर यू वॉन्ट प्लीज़ अपने साथ रखिए अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए हैव लॉट्स ऑफ फ्रूट्स जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो वाटरमेलन एंड ऑल मुझे वाटरमेलन बिल्कुल पसंद नहीं था बट नाउ आई ईट क्यों क्योंकि मुझे हाइड्रेटेड रहना है एंड आई डोंट वॉन्ट कि ये हीट मेरी बैंड बजा दे And I do not want that for you as well, ठीक है इसलिए याद दिलाती रहती हूँ अपना ख्याल रखा करो यार आप इम्पोर्टेंट हो समझते नहीं हो आज को सेंडिंग जबरदस्त हिट योर वे इश्का वे इन द वॉइस ऑफ ज़ीशान अली स्टे ट्यून एंड बिंदास मेरी जान
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट

0: Aisha.
1: रेमा फर्नांडिस की आवाज में सिग्नल ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM तनीशा के साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर. एंड नेक्स्ट गाना जो मैं प्ले करने वाली हूँ दैट इज आडी बर्मन साहब और आशा ताई की आवाज में कारवा मूवी से पिया तू अब तो आजा. एंड देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड इट. सो मजरू सुल्तानपुरी साहब ने जब ये गाना लिखा था और ये गाना जब आशा जी को पेश किया गया कि आपने ये गाना है, मजरू सुल्तानपुरी साहब खुद आशा जी के पास आए, बोले बेटी मैंने ना एक ऐसा गाना लिखा है जिससे मैं बहुत खुश नहीं हूँ. द काइंड ऑफ लिरिक्स द सॉन्ग हैज़ बिकॉज उसकी जो मूवी थी उसकी डिमांड थी तो मुझे लिखना पड़ा, पर मैं बहुत खुश नहीं हूँ इससे और इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ. पर आशा ताई बहुत प्रोफेशनल थी अपने काम को लेकर एंड शी वॉज लाइक इट्स ओके मजरू साहब आपने लिखा है मैं गाऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट. शी सैंग एंड द सॉन्ग वॉज लाइक सुपर डुपर हिट और फिर उनको फिल्म फेयर भी मिला इस गाने के लिए. लेकिन उन्होंने आर डी बर्मन साहब से ज़रूर ये बात पूछी कि ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ, लता दीदी को इतने यू नो सोलफुल गाने देते हो और मुझे सारे ये कैबरे वाले और यू नो डांसिंग नंबर्स ही दिए जाते हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई कंट्रोवर्सी का चांस होता है, व्हाई डू यू डू दिस टू मी. तो उस पे बर्मन साहब ने कहा कि मुझे पता है कि जो भी गाना मैं तुम्हें दूंगा वेदर इट इज़ कॉन्ट्रोवर्शियल और अ कैबरे नंबर, तुम गाओगी तो वो सुपरहिट होगा ही होगा एंड दैट इज़ अ फैक्ट. He was not wrong about it. So I enjoy karte hain Ashita Aayi aur R.D. Barman sahab ki awaaz mein Piya Tu Ab To Aaja from the movie Karwa. Stay tuned and Jio Bindaas.
2: 1940s ki sadgi se lekar 70s ke retro revolution tak, modern pop songs ke swag se Hindi cinema ke cult classics tak, waqt badalta raha par ek awaaz hamesha sabse aage rahi.
3: Jawan ne jaane man
2: आशा ताई की. आज आशा भोसले जी की बर्थ एनिवर्सरी पर सुनिए उनके सुपरहिट गाने ओनली ऑन रेडियो.

back from vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में shopping करें best prices पर, सिर्फ Nesto Hypermarket में। Groceries हो, fresh food हो या daily essentials, सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर। तो अपनी shopping को बनाए और भी profitable। Nesto Hypermarket, 152nd branch now open in Old Passport Office, Algarafa.

0: Ready?
1: Ready!
0: To learn!
1: Yes!
0: To play!
1: Absolutely!
0: To grow!
1: With Maserati!
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
1: मिल्क चीज योगर्ट लेबनी एग्स
2: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
3: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: Back from vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं. अब कतर में shopping करें best prices पर. सिर्फ Nesto Hypermarket में. Groceries हो, fresh food हो या daily essentials, सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर. तो अपनी shopping को बनाए और भी profitable. Nesto Hypermarket, 152nd branch now open in Old Passport Office, Algarafa.
2: गजलों की गहराई हो या बॉलीवुड के गानों का बेहिसाब चुलबुलापन, आशा जी ने जिंदगी के हर रंग को अपनी आवाज से सजाया है. तो आइए आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर रेडियो ऑलिव पर सुनते हैं आशा ताई की जिंदगी की कहानी उन्हीं की जुबानी.
3: ये जरूरी नहीं है कि बहुत ढाई ढाई म्यूजिक हो, और सबसे बड़ी बात है कि बोल अच्छे होने चाहिए. आप देखिए, पुराने गाने आप जब भी सुनते हैं तो आपके लाइफ से मिले जुले बोल होते हैं, तब आप उसको याद भी रखते हैं. अच्छे खूबसूरत बोल समझ में आए, ऐसे बोल होने चाहिए. आजकल बोल इतने बहुत अच्छे नहीं होते हैं. मेरा ज़्यादातर ये ख्याल है कि स्टोरी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि देखिए, घरेलू स्टोरी होती है, बहन का गाना होता है तो राखी का गाना होता है, माँ बेटे का होता है तो लोरी होती है. कुछ अच्छे गाने आ सकते हैं, लेकिन जहाँ मार पिटाई की है, फिल्म हीरो आता है दरवाजे लातों से तोड़ता है और ये मारा मरी ढोए ढोए चलता है, उसमें क्या गाने आएंगे ये हमें भी नहीं समझ आती. तो सच्ची सोच के थोड़ा डर सा लगता है, अफसोस होता है, लेकिन सब ये सोचते हैं कि जो चलता है माल वही देना है. मेरा ख्याल है पब्लिक भी इसमें कसूरवार है. अगर जो वो ऐसे गाने ना सुने और कहें कि हमें पसंद नहीं, तो उनको चेंज करना पड़ेगा. पब्लिक भी कहती नहीं है या सुनती हैं, लेकिन हमेशा हमसे कहा जाता है कि भाई हमें पुराने गाने पसंद हैं, हम पुराने गाने सुनते हैं. फिर ये क्या हो रहा है मैं नहीं समझ पाती. रात के बाद दिन आता है, फिर दिन के बाद रात, ये साइकिल है, चलती रहती है. तो आज जो स्टाइल चल रहा है, कल जो था वो आज नहीं है, तो आज है वो भी नहीं रहेगा. फिर से मेरा ख्याल है लोग क्लासिकल के तरफ झुकेंगे और क्लासिकल पे बेस गाने आएंगे जरूर, मुझे ऐसा लगता है.
2: रेडियो ऑलिव के साथ लेट्स सेलिब्रेट द टाइमलेस इमोशन, लेट्स रिलिव द मैजिक दैट शेप्ड जनरेशंस.
4: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव पे.

0: Tanisha. Tanisha.
1: You're listening to Radio 106.3 FM. Tanisha aapke saath bindaas morning chal raha hai yahan par. And Mitrash app pe ek naya check payment service ka option jo hai wo aa chuka hai. Ji haan. So Ministry of Interior ne announce kiya hai ki ye jo naya service hai Mitrash app pe wo users ko unke check settle karne ka option dega electronically. Yeah, you do not have to go physically. So, ये जो service है, it is launched in cooperation between the ministry's verdict execution department and the public prosecution. And जो check payment है, वो directly आप app के through कर सकते हैं. You can access this service through the public prosecution fine section on Mitrash. वहाँ पर जाकर आप check करेंगे, तो आपको मिल जाएगा ये. And then you have to select the relevant establishment और check की details उसमें डालनी और फिर payment कर देना है. Proceed. Easy peasy. Yes. Another example of going smartly digital. यार मुझे नॉस्टैल्जिया दे दिया क्रेजी वाला. छोटी सी थी मैं शादियों में डांस करती थी इस गाने पे. कुड़ी कुड़ी वाले गाने की बात कर रही थी. हाँ और ये जो आने वाला गाना सुनाने वाली हूँ मैं वो आपके लिए भी और मेरे लिए भी.

0: हाँ जी, आप भी मैं भी, ठीक है? सो ऐसा नहीं लगे कि ऑब्सेस्ड हो रही है तनीषा खुद से. सुंदरी रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.

0: Tanisha.
1: आदिफ असलम की आवाज में आदत ओनली ऑन रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर. और अगला गाना जो मैं पेश करने वाली हूँ आपके लिए वो है आशिता यार मोहम्मद रफी साहब की आवाज में यादों की बारात मूवी से चुरा लिया है तुमने जो दिल को. एंड व्हाट एन आइकॉनिक ट्रैक इट इज. सो व्हाइल मेकिंग दिस ट्रैक वो जो स्टार्टिंग में हम क्लिंकिंग सुनते हैं ना ग्लासेस की, वो आरडी बर्मन साहब का आइडिया था कि यू नो मुझे कुछ अनयूजुअल चाहिए. और उनकी आदत थी वो ऐसे नई नई तरकीबें निकालते थे म्यूजिक क्रिएट करने के लिए. सो देन ही केम अप विद दिस आइडिया कि कोई पर्क्यूशन इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ करूँगा मैं, आई एम गोइंग टू यूज़ अ स्पून एंड अ ग्लास और यू नो उसको क्लिंक करके दे रिकॉर्डेड दैट साउंड एंड देन सॉफ्टली आशा जी की खूबसूरत आवाज़ आती है. ओए होए इतना सुंदर गाना है. तो विदाउट मच अडू पेश करती हूँ आपके लिए आशिता स्पेशल ऑन हर बर्थ एनिवर्सरी चुरा लिया है तुमने जो दिल को. स्टे ट्यून्ड, आई एम जयो बिंदास. 1940s की सादगी से लेकर 70s के रेट्रो रेवोल्यूशन तक, मॉडर्न पॉप सॉन्ग्स के स्वैग से हिंदी सिनेमा के कल्ट क्लासिक्स तक, वक्त बदलता रहा पर एक आवाज हमेशा सबसे आगे रही, जवान जान मन आशिता की. आज आशा भोसले जी की बर्थ एनिवर्सरी पर सुनिए उनके सुपरहिट गाने ओनली ऑन रेडियो ऑलिव.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Al Wakra. For more details, call 500-56123.
1: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आर जे निशा को बिंदास मॉर्निंग में।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
3: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Romy or Shreya Ghoshal ki awaz mein Varu from the movie Mirzapur only on Radio Olive 106.3 FM. Tanisha aapke saath Bindaas Morning chal rahe hain ab.
1: Ye hai chalti phirti dictionary.
0: आज का जो वर्ड ऑफ द डे है और इट कैन बी यूज एज अ वैक्यू विजडम ऑल्सो ठीक है बिकॉज इट इज विजडम इटसेल्फ ठीक है इट्स अ छोटू सा दो वर्ड्स का फ्रेज एंड इट इज कॉल्ड अमोर फाती यस अमोर फाती ए एम ओ आर एफ ए टी आई इट इज अ लैटिन फ्रेज एंड विच बेसिकली ट्रांसलेट्स टू लव ऑफ फेट So, I have taken a decision in my life. ठीक है मैंने सोचा है आज कि मैं बाल कटवा लूँगी अपने अब कटवा लिए हैं मैंने जस्ट एक्साइटमेंट में आके कि कुछ चेंज करना है अपने बारे में एंड देन आई डू नॉट लाइक इट या फिर अब मैं क्या करूँ क्योंकि ये तो हम सब की आदत होती है एक बार हेयर कट करवा के आते हैं और फिर बाद में घर आके रोते ज़रूर हैं है ना लेकिन इंस्टेड ऑफ कीप क्राइंग अबाउट इट और क्रिबिंग अबाउट इट कि यार क्या गलत डिसीजन ले लिया है अब ले लिया है ना तो मैं उसको कैसे खूबसूरती से स्टाइल करके अपनी पर्सनालिटी को और इन्हांस कर सकती हूँ मुझे इस बारे में सोचना है दैट इज़ बेसिकली अमोर फाती और एनी सिचुएशन विच हैपन्स इन योर लाइफ विच डज नॉट अलाइन विथ व्हाट यू थॉट की होना चाहिए कुछ अलग ही हो गया है और उसके बारे में बैठ के रो रहे हैं नहीं रोना नहीं है एक्सेप्ट करो उसको टेक आउट द लेसन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी लर्न फ्रॉम दैट सिचुएशन एंड प्रैक्टिस दैट इन लाइफ और बस आगे बढ़ो यार Enjoy करो जो भी हो रहा है दैट इज बेसिकली अमोर फाती फॉर यू लविंग द लाइफ एट इट एज इट हैपन्स जो हो रहा है उसको जिस भी तरह से यू नो एक अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके जैसे भी आप इंजॉय कर सकते हो उसे इंजॉय करो बिकॉज लाइफ एक ही बार मिलती है यार बार बार नहीं मिलती तो हम इसको भी क्रिप करके रो रो के गुजार देंगे तो क्या ही फायदा रहा ऐसे जिए तो क्या जिए मेरी जान सो वट एवर इज हैपनिंग जस्ट ट्राई एंड एन्जॉय इट आई नो इट्स ईजी सेड देन डन मेरे साथ भी होगा तो मैं भी फर्स्ट मेरा थॉट ये होगा कि यार थोड़ा रो लेना चाहिए वो आ जाता है बट वी हैव टू ट्राई राइट थोड़ा कम्फर्ट जोन से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा एंड आई नो हाउ कम्फर्टिंग इट इज स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. टफ काम और भी आसान कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले विजिट कार्मल ग्रुप नाउ

0: दस मॉर्निंग आरजे तनीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: तनिषा।
1: ब्रेकअप आज हमारा हो सकता है पेन से। जी हाँ, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम। तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर। एंड आशुताई का बर्थडे तो हम आशुताई की बर्थ एनिवर्सरी तो हम सेलिब्रेट कर ही रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट टुडे इज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे। जी हाँ, एंड फॉर दैट आई हैव समवन रियली स्पेशल विद मी।
2: हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज निवेदिता, आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। मैं कतर में 12 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। टुडे आई एम रिप्रेजेंटिंग IPFQ, व्हिच इज इंडियन फिजियोथेरेपी फोरम कतर।
1: वेलकम डॉक्टर निवेदिता, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू टॉक टू यू बिकॉज बहुत सारे सवाल है हमारे पास फिजियोथेरेपी को लेकर और मिसकंसेप्शंस भी हैं जो आप दूर करेंगी। लेकिन सबसे पहले मुझे बताइए कि व्हाट एग्जैक्टली इज IPFQ?
2: सो IPFQ स्टैंड्स फॉर इंडियन फिजियोथेरेपी फोरम कतर। हम इंडियन एम्बेसी के अंडर आते हैं। देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज इंडियन बिजनेस प्रोफेशनल्स काउंसिल। वी आर एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ IBPC, व्हिच कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इंडियन एम्बेसी कतर। सो इट्स अ प्रोफेशनल non-profit organization, basically for all the physiotherapists who live in Qatar, they can be a member. Either you're working or not working, you can be a part of this organization.
1: Wow, amazing. So there's a lot to talk to Dr. Nibedita. We'll be back after a short break. Sundari Radio Olive, to you, Bindas.

0: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: गजलों की गहराई हो या बॉलीवुड के गानों का बेहिसाब चुलबुलापन, आशा जी ने जिंदगी के हर रंग को अपनी आवाज से सजाया है। तो आइए आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर रेडियो ऑलिव पर सुनते हैं आशा ताई की जिंदगी की कहानी उन्हीं की जुबानी।
2: चुनरिया और रात की रानी, उसमें सोलो गाना था मेरा, जल जल के गिरे हैं परवाने दो चार इधर दो चार उधर।
3: जरा गाकर सुनाइए अगर याद आ रही है।
2: अच्छा हाँ।

0: ये गाना था।
1: अच्छा जी, ये हंसराज जी बहल की जी की धुन पर रात की रानी से आप गीतों की रानी बन गई। उसके बाद आपने बीसियों सैकड़ों हजारों गीत गाए। अब तक कुल कितने गीत गाए होंगे?
0: मैंने गिन के नहीं रखा है।
1: अच्छा।
0: लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मैंने बहुत ज्यादा गाए, क्योंकि मेरे गाने का रेशो बहुत, मतलब तीन गाने चार गाने, बल्कि EMI ने मुझे जब गोल्ड डिस्क दिया है तब उसमें उन्होंने खुद कहा है, मिस्टर ब्राउन ने, कि मेरे दिन के सात गाने मैंने गाए हैं, ये रिकॉर्ड है।
1: और हर एक संगीतकार के साथ, ST बर्मन से लेकर मदन मोहन जी, खयाम, RD बर्मन, OP नैयर, ये बताइए कि किसी एक म्यूजिक डायरेक्टर ने आपको जज्बाती तौर पर अपनी तरफ खींचा है ज्यादा?
0: जी हाँ, जो कि जिन्होंने मुझे प्लेबैक सिंगिंग क्या वो सिखाया, और बहुत ज्यादा अपनी लड़की जैसा प्यार करते थे
1: जी,
0: और ये बताते थे कि आप आर्टिस्ट बोलता कैसे है, दिखता कैसे है, उसकी फिगर कैसी है, ये सब चीज को देख के गाना गाओ। और ये उन्होंने सिखाया, जिनका नाम है ST बर्मन
1: जी,
0: दादा कहते थे।
2: रेडियो ऑलिव के साथ लेट्स सेलिब्रेट द टाइमलेस इमोशन, लेट्स रिलिव द मैजिक दैट शेप जनरेशंस।
3: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
4: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Nisha.
1: You're listening to Radio 106.3 FM. Tanisha है आपके साथ और मेरे साथ इस वक्त है डॉक्टर निवेदिता. And as I said, अगर आपके कोई सवाल है तो हमें मैसेज कीजिए राइट अवे, डॉक्टर निवेदिता से हम जवाब ले लेंगे यार. And we have got a question over here, doctor. So they want to know what role does physical activity or exercise play in reducing risk factors like high blood pressure, cholesterol and obesity. क्या इसमें कोई हेल्प करता है फिजियोथेरेपी?
2: सो बेसिकली हम सब जानते हैं, लाइक हार्ट, यू हैव अ हार्ट, हार्ट इज ऑल्सो अ मसल. वी नो दैट आपके पैरों में हाथों में भी मसल्स होते हैं, बट हार्ट इटसेल्फ इज अ बिग मसल. सो इफ यू डोंट एक्सरसाइज योर हार्ट, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू गेट वीक. उससे भी फिर अगेन रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं. अगर आप हार्ट को एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, वजन बढ़ सकता है, विच विल अल्टीमेटली लीड टू हार्ट डिजीज एंड देन स्ट्रोक. सो इससे क्या होता है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करने लगोगे तो ऑल दिस योर यू नो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव्स, योर कोलेस्ट्रॉल लेवल गोज डाउन, योर वेट गेन विल नॉट हैपन, या यू यू नो फर्दर लूज वेट. सो ऑल दिस विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क फैक्टर्स एंड अल्टीमेटली यू नो योर मोर फिटर एंड हेल्दियर.
1: राइट राइट, मेक सेंस. डॉक्टर, कैन यू एलैबोरेट अ लिटिल बिट ऑन हाउ फिजियोथेरेपी हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग हार्ट डिजीज और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस प्लीज?
2: सो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज फिजियोथेरेपी, लाइक यू गो टू अ डॉक्टर, डॉक्टर विल गिव यू अ डॉक्टर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन. सो go to a physiotherapist, a therapist can give you exercise prescription. So aapke age, height, weight, aapke jo present medical status hai uske hisab se a physiotherapist can prepare an exercise plan for you. Ki aapko kitne minutes kya exercise kar sakte ho, aap like 30 minutes aap walk kar sakte ho, 20 minutes aap aur kuch exercise kar sakte hain along with the right movement. So all this will help in preventing any you know cardiovascular diseases or you know further complications. So aisa nahi ki aapko kuch matlab heart attack hone ke baad physio ke paas जाके कार्डियक रिहैब करना है, ऐसा नहीं है. आप पहले से ही यू कैन कंसल्ट अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड मेक इट अ पार्ट ऑफ योर रूटीन, की फिटनेस विल बी अ पार्ट ऑफ योर रूटीन एवरीडे लाइफ.
1: राइट, प्रिवेंशन इज एनी डे बेटर देन क्योर. सो अपना ख्याल रखें और सुनते रहें, लौट कर आते हैं कुछ देर में. जियो बिंदास. 1940s की सादगी से लेकर 70s के रेट्रो रेवोल्यूशन तक, मॉडर्न पॉप सॉन्ग्स के स्वैग से हिंदी सिनेमा के कल्ट क्लासिक्स तक, वक्त बदलता रहा पर एक आवाज हमेशा सबसे आगे रही,
3: जवान जाने मन
1: आशा ताई की. आज आशा भोसले जी की बर्थ एनिवर्सरी पर सुनिए उनके सुपरहिट गाने ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM.

बैक फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन, तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर, सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में। ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर। तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल। नेस्टो हाइपरमार्केट, 152nd ब्रांच, नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, अलगराफा।

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Level 6.3 FM. Tanisha है आपके साथ और मेरे साथ इस वक्त है डॉक्टर निवेदिता जो कि वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे पे हमें बता रही है कि कैसे हम हमारा ख्याल रख सकते हैं यू नो प्रिवेंट कर सकते हैं एनी हार्ट डिसीज और कार्डियोवैस्कुलर डिसीज को पहले ही उनकी एडवाइस फॉलो करके. सो डॉक्टर आई वॉन्ट यू टू गिव वन एडवाइस टू पीपल जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं जो दे कैन डू फॉर हेल्दी हार्ट मूवमेंट.
2: आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग nowadays I would want to say is please move. Movement is medicine. मतलब आप आधे घंटे से ज्यादा आपको बैठना नहीं है. अगर आप ऑफिस में डेस्क जॉब कर रहे हो तो आधे घंटे पे या मैक्सिमम 45 मिनट्स में आपको आपका अलार्म बजना चाहिए. आपको उठना है, दो चार मिनट चलना है, मे बी सिप सम वॉटर, कम बैक टू योर सीट. फिर समथिंग कॉल्ड एज हैबिट स्टैकिंग. ओके, सो बेसिकली आई सजेस्ट दिस टू मोस्ट ऑफ माई पेशेंट्स. लाइक 45 मिनट्स अगर आप बैठ गए तो आपको उठना है. यू विल सिप वॉटर. एज वेल एज यू सिप वॉटर यू हैव टू रिमेंबर टू डू सम बेसिक. एक टाइम में आपने थोड़ा नेक मूवमेंट्स कर लिया, शोल्डर मूवमेंट्स कर लिया. ओके, द नेक्स्ट ब्रेक सेम थिंग. यू गेट अप, सिप वॉटर, यू डू सम काफ रेजेस. ओके, सो योर काफ इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेकेंड हार्ट. इट्स ऑल्सो नोन द काफ मसल इज ऑल्सो नोन एज अ सेकेंड हार्ट इन अ पर्सन. क्योंकि जो काफ मसल है सारी ब्लड को इट पुशेस टूवर्ड्स योर हार्ट ऑलवेज. सो यू नो डू 10 to 15 काफ रेजेस. थर्ड ब्रेक में आप फिर से उठो, सिप सम वॉटर, डू सम लंजेस. सो पूरे दिन में आप इतना एक्सरसाइज करोगे सो ओवरऑल इट इज कीपिंग यू एक्टिव. बट अदर देन दिस आई वुड ऑल्सो रिकमेंड, आई मीन दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन दैट ट्राई टू वॉक एटलीस्ट 150 मिनट्स इन अ वीक, विच इज 30 मिनट्स एवरी डे 5 डेज अ वीक. That's the most basic you can start with. Like if you're not exercising at all, that's the most basic thing a person should start with. 30 minutes of walk 5 days a week. It's going to help you in the long run.
1: Wow, that was such a simple advice but still very effective and very doable. So, jitne bhi log sun rahe hain, including myself right now, doctor, I think we all will be able to, inculcate those habits in our day-to-day life. Thank you so much for your time, doctor. And you guys... हमारा सोशल मीडिया जाकर फटाफट से चेकआउट करिए radioolive.qa, क्योंकि कुछ ही देर में डॉक्टर निवेदिता की एक वीडियो वहां पर आने वाली है जिसमें वो आप कुछ टिप्स देने वाली हैं इफ यू हैव अ डेस्क जॉब, हाउ टू कीप योरसेल्फ हेल्दी थ्रू फिजियो एट योर डेस्क ओनली. एकदम इजी पीजी. हाँ जी, बाकी फिलहाल वक्त हो चुका है मेरे जाने का. मिलेंगे कल सुबह 6 बजे. सुनते रहिए Radio Olive 106.3 FM. हैव एन अमेजिंग डे. जियो बिंदास मेरी जान.

टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल

वेलकम, गुड मॉर्निंग. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. दिस इज वी मुस्कान विद यू और ये है लाइफ मस्त है. सो आज सुबह जब मैं उठी तो मुझे लगा कि यार एक चीज तो है हमारी जनरेशन के पास, सबसे बड़ी सुविधा कि हर सवाल का जवाब है. कभी भी जानना हो गूगल, कुछ भी देखना हो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पॉडकास्ट, मतलब इन्फॉर्मेशन की तो कमी बिल्कुल नहीं है. लेकिन एक चीज की कमी है, विच इज ध्यान, मतलब अटेंशन नहीं है. हम 5 मिनट की कोई वीडियो ना पूरी नहीं देख पाते. किसी दोस्त से बात करें और बीच में कोई नोटिफिकेशन आ गया तो फोन देख लिया. फिल्म चल रही है, हाथ अपने आप इंस्टाग्राम खोल लेते हैं. और सबसे मजेदार बात पता है क्या है कि हम फोन खोलते हैं और हमें खुद नहीं पता होता कि फोन उठाया क्यों था, बस चला जाता है फोन की तरफ हमारा ध्यान. इंस्टाग्राम, फिर व्हाट्सएप, फिर इंस्टाग्राम और 5 मिनट बाद फिर हम पूछते हैं कि यार मैंने क्यों फोन उठाया था. और आज इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि हमारा दिमाग ना हर चीज को इंपॉर्टेंट समझने लगा है. हर नोटिफिकेशन हमें अर्जेंट लगता है, हर मैसेज का जवाब हमें अभी चाहिए, हर ट्रेंड पता होना चाहिए, हर ओपिनियन पर हमारी भी ओपिनियन होनी चाहिए. लेकिन शायद जिंदगी में ना एक चीज फिर भी सीखने की जरूरत है कि एक समय पर सिर्फ एक चीज करना. चाय पी रहे हैं तो सिर्फ चाय पीजिए, गाना सुन रहे हैं तो सिर्फ गाना सुनिए, किसी इंसान के साथ बैठे हैं तो सच में उसके साथ बैठिए. क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको बहुत कुछ बता सकती है, लेकिन अटेंशन ही ये तय करता है कि इनमें से क्या आपके लिए मायने रखता है. सो आज आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जिस पर आप बिना फोन चेक किए कम से कम आधा घंटा पूरा ध्यान दे सकते हैं? कोई किताब, कोई सॉन्ग, कुकिंग, वर्कआउट या फिर कोई इंसान? बताइए मुझे 3311063 पर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव और ये है लाइफ मस्त है.

0: ਉਹ ਪੱਟ ਦੇ ਤੂੜਾ।
1: ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਓਲਿਵ 106.3 FM ਜੀਓ ਬਿੰਦਾਸ। टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
2: गजलों की गहराई हो या बॉलीवुड के गानों का बेहिसाब चुलबुलापन, आशा जी ने जिंदगी के हर रंग को अपनी आवाज से सजाया है। तो आइए आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर रेडियो ऑलिव पर सुनते हैं आशा ताई की जिंदगी की कहानी उन्हीं की जुबानी।
3: वो बचपन से मुझे एक आदत थी कि फिल्म देखना, गाना सुनना और उसकी नकल करना उन चीजों की, जैसे कोई सिंगर गाए उसका आवाज वैसे निकालने की कोशिश करना, ये सब सबको मतलब घर में था, वैसे मुझे भी था। आपको बताती हूँ, एक पिक्चर, इंग्लिश पिक्चर में कैरमन मरांडा करके एक सिंगर थी, वो अजब कपड़े पहनती थी और अजब टोपी में कुछ फल वल लगे होते थे। तो हमारा घर तो क्लासिकल गाने वालों का, लेकिन मैं जब ये गाना घर में आके चिल्ला चिल्ला के गाती थी तो माँ को लगता था ये पता नहीं कहाँ से भूत की तरह कर रही है, और माँ मारती थी। तो वो गाना मैं आपको बताती हूँ, वो गाना बाद में मुझे कैसे काम आया वो भी बताती हूँ। मम मम मम मम करो मामा ये मैं आके घर में गाऊं और गालियां सुनूं। इसके बाद बहुत सालों बाद मुझे श्री रामचंद्र जी का गाना मिला, तो वो मैं जितना भी गाती थी वो उनको पसंद नहीं आ रहा था। तो मुझे दिमाग में वो औरत आई और मैंने टेक के वक्त गाया, मिस्टर जॉन बाबा खान या लल्ला रोशन दान, ऐसे किया। और वो गाना इतना सबको अच्छा लगा कि कहने लगे ये कैसे तुमने किया। तो मैंने तब बताया नहीं कि मैंने कैरमन मरांडा को कॉपी किया। तो इसी तरह अपने गाने को मैंने हर बार चेंज किया, वॉइस को चेंज करना, स्टाइल को चेंज करना।
2: रेडियो ऑलिव के साथ लेट्स सेलिब्रेट द टाइमलेस इमोशन, लेट्स रिलिव द मैजिक दैट शेप्ड जनरेशंस।
4: हाय गाइस, दिस इज बार्फिती खुराना और आप मुझे सुन रहे हो रेडियो ऑलिव पर।

0: सो एक समय था जब घर में बच्चा ना वीडियो गेम खेल रहा होता था तो मम्मी की आवाज आती थी कि बस करो आंखें खराब हो जाएंगी। और आज वही मम्मी कभी कभी बच्चे से पूछती है कि वो वाला गेम कौन सा था जिसमें घर बनाते हैं। सो गेमिंग को हम हमेशा बच्चों और टीनेजर्स से जोड़ते हैं, लेकिन अब तस्वीर ना काफी बदल गई है। आज बहुत सारे एडल्ट्स गेमिंग करते हैं ऑफिस में आने के बाद, वीकेंड पर, ट्रैवल में, दोस्तों के साथ, ऑनलाइन। और वजह ना सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, किसी के लिए गेमिंग कंपटीशन है, किसी के लिए दोस्तों के साथ मिलने का नया तरीका, किसी के लिए स्ट्रेस से बाहर निकलने का तरीका। और शायद सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि गेम्स हमें एक ऐसी चीज़ देते हैं जो रियल लाइफ हमेशा नहीं देती। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। क्लियर गोल्स, गेम्स में आपको पता होता है कि ये लेवल कंप्लीट करना है, ये चैलेंज जीतना है, ये नेक्स्ट स्टेज अनलॉक करना है, ठीक है। रियल लाइफ में क्या होता है, बॉस ने कहा कि अच्छा काम करो, लेकिन कितना अच्छा, कब तक करना है और प्रमोशन का लेवल कब अनलॉक होगा, कुछ नहीं पता, कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। इसीलिए शायद गेमिंग में हमें वो छोटी छोटी विक्ट्रीज मिलती हैं जो रियल लाइफ में कभी दिखाई नहीं देती। एक लेवल कंप्लीट किया, अचीवमेंट, एक मैच जीता, रिवॉर्ड मिल गया, एक प्रॉब्लम सॉल्व की, नेक्स्ट लेवल पे आ गए। और अब जरा अपनी जिंदगी को गेम मानकर सोचिए, अगर आपकी लाइफ में एक फाइनल बॉस है तो वो कौन है? कोई वर्क वीक स्टार्ट होता टाइम वो संडे, ऑफिस का वर्कलोड, मनी मैनेजमेंट, या फिर पेरेंटिंग, या फिर खुद का आलस। और अगर आपको आपकी अपनी जिंदगी का एक लेवल आसान करना हो तो आप क्या चेंज करोगे? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, नंबर इज 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है, कूल सॉन्ग।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बैक फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में। ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर। तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल। नेस्टो हाइपरमार्केट 152nd ब्रांच नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस अलगराफा।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ओल्ड पासपोर्ट ऑफ

0: अब ये टॉपिक ना खासकर मेरी फीमेल लिसनर्स समझ पाएंगी। आप अपना वार्डरोब खोलो, कपड़े भरे पड़े हैं, एक तरफ पूरे डेनिम्स हैं, दूसरी तरफ ड्रेसेस हैं, कहीं एथनिक वेयर, कहीं वो टॉप जो कभी ना कभी काम आएगा सोचकर खरीदा था, और फिर हम अलमारी को बंद कर कर बोलते हैं मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। ये सेंटेंस दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टीरियस में से एक है। और असली प्रॉब्लम कपड़ों की कमी नहीं है, कभी कभी प्रॉब्लम ये है कि हमें लगता है ये तो मैं पहले पहन चुकी हूँ, और अगर इंस्टाग्राम पर फोटो भी आ गई तो बस अब तो वो आउटफिट दोबारा पहनना मतलब सबसे बड़ा ऐसा लगेगा कि क्या कर दिया है। लेकिन ऑनेस्टली बताइए, आपको कितने लोगों ने कपड़े, आपको लगता है कि आपको अपने कॉलीग्स के कपड़े याद रहते हैं, आप अपनी फ्रेंड से मिलते हो और बोलते हो कि यार एक मिनट, ये टॉप तुमने 17 जून को ही पहना था ना, कोई नहीं बोलता, राइट? हम खुद अपने कपड़ों को लेकर जितना सोचते हैं बाकी दुनिया शायद उसका 10% भी नोटिस नहीं करती। और शायद यही चीज लाइफ के दूसरे हिस्सों में भी है। हम सोचते हैं लोग हमारी छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है वो याद रखेंगे, वो हमारे ऑकवर्ड बात याद रखेंगे, वो नोटिस करेंगे कि हमने क्या रिपीट किया। लेकिन सच ये है कि हर इंसान अपनी ही जिंदगी में इतना बिजी है कि उसे आपके आउटफिट रिपीटेशन से मतलब कोई लेना देना नहीं है, उसे रिसर्च करने का टाइम ही नहीं है। और एक और अच्छी बात यह है कि एक ही कपड़े को बार बार पहनना कोई शर्म बात भी नहीं है। कपड़े की वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि वो कितनी बार इंस्टाग्राम पर आया। कभी कभी आपकी सबसे फेवरेट टी शर्ट वही होती है जो नई होती है, लेकिन पहनते ही लगता है कि हाँ आज मैं बहुत कंफर्टेबल हूं। सो आई विल से कि आज अलमारी खोलकर एक चीज निकालिए जो आपकी फेवरेट है, और मुझे बताइएगा जरूर कि आपके वार्डरोब में वो कौन सा कपड़ा है जिसे आप 10 नए कपड़ों के बावजूद बार बार पहनना पसंद करते हैं। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान और नंबर है 3311063। स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास।
1: 1940s की सादगी से लेकर 70s के रेट्रो रेवोल्यूशन तक, मॉडर्न पॉप सॉन्ग्स के स्वैग से हिंदी सिनेमा के कल्ट क्लासिक्स तक, वक्त बदलता रहा पर एक आवाज हमेशा सबसे आगे रही,
2: जवान ने जाने मन,
1: आशा ताई की। आज आशा भोसले जी की बर्थ एनिवर्सरी पर सुनिए उनके सुपर हिट गाने ओनली ऑन रेडियो ऑलिव।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए।

आज एक किताब के टाइटल ने मेरा पूरा ध्यान खींच लिया। How can my manager be so stupid? ये किताब का नाम था। अब टाइटल पढ़ते ही मुझे लगा कि किसी ना किसी ऑफिस में इस किताब की पूरी ऑडियंस पहले से ही बैठी होगी, क्योंकि ऑफिस में एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। एम्प्लॉय को लगता है कि बॉस को कुछ समझ नहीं आता, और बॉस को लगता है कि एम्प्लॉय को कुछ समझ नहीं आता, और दोनों के बीच में एक HR होता है जो सोच रहा होता है कि हे मतलब कैसे, मैं ही क्यों, मेरी ही यहाँ पर बात क्यों नहीं सुनी जाती। लेकिन जरा दूसरी तरफ से सोचिए, एक एम्प्लॉय को लगता है कि बॉस हर काम अर्जेंट क्यों बोलते हैं, और बॉस सोच रहा होता है कि क्लाइंट हर चीज अर्जेंट क्यों बोल रहे होते हैं, और क्लाइंट सोच रहा होता है मैंने तो बस पूछा था, और इस तरह एक छोटी सी ईमेल पूरी ऑर्गेनाइजेशन में इमोशनल डैमेज कर देती है। लेकिन मजाक से अलग हटकर बात करते हैं, ऑफिस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना कई बार काम नहीं होता, कम्युनिकेशन होता है। एम्प्लॉय को पता ही नहीं कि उसे एग्जैक्टली एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है, और मैनेजर को पता ही नहीं कि एम्प्लॉय के पास पहले से कितना काम है, और फिर दोनों एक दूसरे के बारे में अजम्पशंस बनाने लगते हैं कि ये तो लेजी है, ये तो माइक्रो मैनेज करता है, इसको कुछ आता ही नहीं है, इससे काम करवाना तो इम्पॉसिबल है, और धीरे धीरे वर्क प्लेस में प्रॉब्लम काम नहीं आती। सो मैं इससे कहती हूँ कि परसेप्शंस जो होता है ना, इसीलिए आज का सवाल थोड़ा सा मतलब थोड़ा अलग है। मान लीजिए आपके बॉस अभी आपको नहीं पहचान सकते, लेकिन आपकी बात सुन सकते हैं, सो आप उनसे सिर्फ एक सेंटेंस में क्या कहना चाहोगे? सो आई विल नॉट रिवील योर नेम और योर कंपनी, आप बस बता दीजिए कि आपको क्या लगता है कि आपको क्या कहना चाहिए अपने बॉस से। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311063। फटाफट से एक वॉइस नोट रिकॉर्ड कीजिए और भेज दिए व्हाट्सएप पे। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास। Radio

So, कभी आपने कुछ गौर किया है, कुछ आवाजें जो है वो सुनाई नहीं देती, बस याद रह जाती हैं। जैसे आशा जी की आवाज, एक तरफ पिया तू अब तो आजा वो शरारत भरा गाना, दूसरी तरफ इन आंखों की मस्ती में वो जो नजाकत थी, कहीं चुरा लिया है तुमने जो दिल वाला गाना था, भाई वो इतना रोमांटिक है, और कहीं ऐसा दर्द कि गाना ख़त्म हो जाए लेकिन फीलिंग रह जाती है। यही तो आशा जी की सबसे खूबसूरत बात है। उन्हें ना सिर्फ गाने गाना पसंद नहीं था, उन्होंने सिर्फ गाने नहीं गाए, एक्चुअली कैरेक्टर्स को आवाज़ दी है। एक सिंगर के लिए सबसे मुश्किल काम शायद सुर में गाना नहीं बल्कि हर गाने में एक अलग इंसान बन जाना होता है। कभी आवाज़ में नटखटपन चाहिए, कभी मोहम्मत, कभी तड़प तो कभी मस्ती, और आशा जी ने इतने अलग अलग मूड्स को अपनी आवाज़ में ऐसे बसाया है कि जनरेशन्स के पास उनकी अपनी अपनी आशा जी हैं। और उनके बर्थडे पर मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम अक्सर आर्टिस्ट को उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट से याद करते हैं, लेकिन किसी आर्टिस्ट की असली खूबसूरती शायद ये नहीं है कि वो समय बदलने के साथ खुद को बदलता रहे। नई जनरेशन आई, म्यूज़िक बदले, ट्रेंड्स बदले, लेकिन आवाज़ की पहचान बनी रही। सो यू टेल मी कि आपको अगर मैं पूछूं कि आज आपका काम आसान है, कि मैं कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ, आशा जी की वो कौन सी गाना है जो प्ले होते ही आपका मूड एकदम से चेंज हो जाता है, और अगर उस गाने के साथ कोई खास याद जुड़ी है तो वो भी व्हाट्सएप करके बताइएगा। 3311063 इज़ माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
2: गजलों की गहराई हो या बॉलीवुड के गानों का बेहिसाब चुलबुलापन, आशा जी ने जिंदगी के हर रंग को अपनी आवाज से सजाया है। तो आइए आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर रेडियो ऑलिव पर सुनते हैं आशा ताई की जिंदगी की कहानी उन्हीं की जुबानी।
3: कभी मुझे अपने घर वाले पूछते हैं कि तू कौन है, तुझे पता है क्या तू क्यों है? मैंने कहा कौन है, तो मुझे बताओ कौन हूँ मैं। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम आशा भोसले हो
4: जी।
3: मैंने कहा मैं आशा हूँ, सिर्फ आशा भोसले। ये अलग भोसले मतलब क्या कहना चाहिए कि नाम के वजह से है वो है। तो वैसे मैं जो आशा हूँ वो किसी ने पहचाना ही नहीं अभी तक, जो आशा है वो। आशा बहुत सिंपल, बहुत सादी घरेलू औरत है, खाना बनाने वाली औरत है। ये कोई जानता ही नहीं है कि मेरा दिल क्या है, लेकिन गाना है जो बचपन से मिला है वो गाती चली आ रही हूँ।
2: रेडियो ऑलिव के साथ लेट्स सेलिब्रेट द टाइमलेस इमोशन, लेट्स रिलिव द मैजिक दैट शेप्ड जनरेशंस।
5: हाय, दिस इज अमिताभ बच्चन एंड यू आर लिसनिंग टू

0: मान लीजिए अगर आपकी जिंदगी एक फिल्म होती तो इस वक्त बैकग्राउंड में कौन सा गाना चल रहा होता, सोचिए जरा। सुबह उठे एक गाना, ट्रैफिक में फंसे दूसरा गाना, ऑफिस में बॉस ने अचानक कहा कि एक छोटा सा काम था और पीछे से कोई ड्रामेटिक म्यूजिक चलने लगा, फिर शाम को घर लौटी और फेवरेट इंसान की आवाज़ सुनाई दी और बस बैकग्राउंड में एक बढ़िया सा गाना। कितना फनी है ना, हमारी जिंदगी में गाने जो है वो ऑफिशियली किसी सीन का हिस्सा नहीं होते, लेकिन हम उन्हें सीन से जोड़ जरूर देते हैं। एक गाना सुनते ही कॉलेज याद आ जाता है, दूसरा गाना सुनते ही कोई पुराना दोस्त, तीसरा किसी ट्रिप की याद दिला देता है, और कभी कभी कोई गाना ऐसा होता है जिसे सुनकर स्पेसिफिक मेमोरी नहीं आती, बस मूड अच्छा हो जाता है। सो म्यूजिक की ये तो खूबसूरती है, आप लिरिक्स भूल सकते हो, सिंगर का नाम भूल सकते हो, लेकिन उस गाने में जो साथ फीलिंग जुड़ी है वो बहुत याद रहती है। सो एक छोटा सा म्यूजिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप अपने आज के दिन के आज के दिन को ना एक फिल्म मानिए और मुझे व्हाट्सएप पर बताइए कि अभी आपके सीन में कौन सा गाना बज रहा है। अगर लाइफ बहुत अच्छी चल रही है तो ऑफकोर्स रोमांटिक सा गाना, अगर काम बहुत है तो सैड नहीं मोटिवेशनल गाना चाहिए, और अगर कुछ समझ नहीं आए तो कोई ऐसा गाना भेजिए जो बस ये कहता है कि चलो देखते हैं कि आगे क्या होगा। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, नंबर है 3311063, जियो बिंदास।
1: 1940s की सादगी से लेकर 70s के रेट्रो रेवोल्यूशन तक, मॉडर्न पॉप सॉन्ग्स के स्वैग से हिंदी सिनेमा के कल्ट क्लासिक्स तक, वक्त बदलता रहा पर एक आवाज हमेशा सबसे आगे रही,
2: जवान ने जाने मन,
1: आशा ताई की। आज आशा भोसले जी की बर्थ एनिवर्सरी पर सुनिए उनके सुपरहिट गाने ओनली ऑन रेडियो ऑलिव।

0: यार आज के टाइम पे ना लाइफ इतनी ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो गई है कि अगर आपका बर्थडे आने वाला है तो आपको पता है कि भाई कौन क्या सरप्राइज देने वाला है, ठीक है। मतलब शायद ये ना पता हो कि कौन से रेस्टोरेंट जाने वाले हैं, पर ये जरूर पता होता है कि जाना तो है। किसी रेस्टोरेंट में जाने से पहले ही हम रिव्यूज पढ़ लेते हैं, मूवी देखनी है तो ट्रेलर में आधी कहानी हमें पहले ही बता रखी होती है, नया इंसान मिला उससे पहले उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल आपने देख ली। मतलब सरप्राइज होने की जगह हम पहले से रिसर्च करके बैठे हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी जिंदगी अचानक कुछ ऐसा दे देती है जिसकी हमने बिल्कुल उम्मीद नहीं की होती। किसी स्ट्रेंजर ने आपकी मदद कर दी, जिस इंसान से आप उम्मीद नहीं कर रहे थे उसने सबसे पहले आपका साथ दिया। किसी इंटरव्यू में आपको लगा कि यार यहाँ तो सिलेक्शन हो जाएगा और नहीं हुआ। या फिर कभी छोटा सा मोमेंट, आप बहुत खराब मूड में थे और रास्ते में किसी बच्चे ने आपको देखकर स्माइल कर दी, बस दिन थोड़ा ठीक हो गया। और शायद यही छोटे सरप्राइजेस जो हैं वो जिंदगी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। क्योंकि जिंदगी की जब बात हो रही है तो मुझे लगता है कि आजकल सब चीजें हम प्लान करते हैं, क्योंकि अगर हम हर चीज पहले से पता करते हैं तो एक्साइटमेंट कहाँ बचती है। सो आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा मोमेंट आया था जब आपने लिटरली कहा था कि ओह आई डिड नॉट सी दैट कमिंग। गुड सरप्राइज, सो फनी सरप्राइज, या फिर करियर वाला, कोई रिलेशनशिप वाला, कोई भी सरप्राइज, व्हाट्सएप पर अपनी कहानी भेजिए और किसकी जिंदगी में उसे सबसे ज्यादा सरप्राइजेस दिए जरूर बताइए। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है। Awesome.

0: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
1: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
2: हाय, आई एम राजकुमार राव।
3: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
4: हाय, दिस इज दिशा पार्डी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओनली 106.3 FM।

इमेजिन कीजिए कल सुबह आपकी आंख खुलती है और कोई कहता है कि बैग पैक करो आज कहीं चलना है। कोई आइटनरी नहीं है, कोई गूगल सर्च नहीं है, होटल्स की बुकिंग की कोई चिंता नहीं है, बस आप एक बैग और डेस्टिनेशन बाद में डिसाइड होगा। अब ऑनेस्टली बताइए कि आप खुश होगे या पैनिक शुरू हो जाएगा। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। भाई बहुत सारे लोग ऐसे सरप्राइजेस मिलते हैं उन्हें, सो आई वॉज थिंकिंग कि जब ऐसा सरप्राइज मिलता होगा तो उन्हें क्या होता होगा, मतलब खुशी होती होगी या एकदम पैनिक में आ जाते हैं, कहाँ जाना है, कितने दिन के लिए जाना है, होटल कौन सा है, वेदर कौन सा है, नेटवर्क मिलेगा या नहीं, मतलब स्पॉन्टेनियस कितनी सारी चीजें दिमाग में आती है। लेकिन साथ में स्प्रेडशीट भी चाहिए। आज ट्रैवल इतना प्लान्ड हो गया है कि कई बार तो हम डेस्टिनेशन से ज़्यादा उसके बारे में रिसर्च कर लेते हैं, लेकिन जिन ट्रिप्स की प्लानिंग कम होती है ना, कई बार उनकी यादें बहुत बढ़िया बन जाती हैं। गलत रास्ता मिल गया, याद रह गया, कुछ छोटी सी रेस्टोरेंट में यू नो बढ़िया सा खाना मिल गया, वो याद रह गया, किसी अनजान जगह पर किसी लोकल से बात हो गई, वो कहानी बन गई। क्योंकि परफेक्ट ट्रिप, मेमोरेबल ट्रिप हमेशा यू नो एक ही चीज़ नहीं होते। सो अब आपकी बारी है। अगर आपको कल सुबह मतलब मैं बोलूं कि यहां पर आपको जाना है और फ्री टिकट्स आपको मिल रहे हैं, तो आप कहां जाओगे और वहां पहुंचकर सबसे पहले क्या काम करोगे? व्हाट्सएप पर डेस्टिनेशन, या फिर पहला काम ये होगा कि लोगों को बताओगे, या फिर देखते हैं हमारे यू नो लिसनर्स क्या प्लानर्स हैं और कैसे प्लान करते हैं कि अगर उन्हें कल सुबह ही किसी डेस्टिनेशन के लिए सरप्राइज मिल रहा है कि आपको जाना है, सो पहले रिसर्च करते हैं या बैग पैक करके निकल पड़ते हैं। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: Trek. Brought to you by Nanat Al Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor. Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Nanat Al Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
1: गजलों की गहराई हो या बॉलीवुड के गानों का बेहिसाब चुलबुलापन, आशा जी ने जिंदगी के हर रंग को अपनी आवाज से सजाया है। तो आइए आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर रेडियो ऑलिव पर सुनते हैं आशा ताई की जिंदगी की कहानी उन्हीं की जुबानी।
2: ये हर एक के जीवन में होना चाहिए कि हम कुछ नहीं लाए थे, कुछ लेके नहीं जाएंगे। जितना अच्छा करते कर सकते हो वो करो, वो ही जाएगा आपके साथ। दूसरे का दिल मत दुखाओ, किसी के हाय मत लो, और जितना अच्छा कर सकते हो करो। रुपए में चार आने लोगों को दो, लोगों को मदद करो। ये करने से आपके मन को भी शांति मिलेगी और आपका ऊपर जाने का रास्ता भी साफ हो जाएगा।

0: रेडियो ऑलिव के साथ लेट्स सेलिब्रेट द टाइमलेस इमोशन लेट्स रिलिव द मैजिक दैट शेप्ड जनरेशंस
1: हाय दिस इज एयर रहमान
2: रेडियो
1: लिसन टू माय सॉन्ग्स ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव
2: जियो बिंदास
3: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क

0: भाई आई वॉज रीडिंग वन आर्टिकल जिसमें लिखा हुआ था कि मैरिजेस में सबसे ज्यादा जरूरी है लव, फ्रेंडशिप या पेशेंस. मतलब ऐसे क्वेश्चन मार्क बना हुआ था. आई वॉज वंडरिंग कि यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो आप ही से पूछ लेती हूँ. शादी की शुरुआत में तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है. आप खाना खा लो, आप थक गए होगे, आपकी फेवरेट चीज क्या है, मैं बना देती हूँ, बना देता हूँ, ऐसे करके आप एक दूसरे का ख्याल रखते हो. और कुछ साल के बाद हम ना एक दूसरे की आदतों को इतना अच्छे से जान चुके होते हैं कि हमें पता होता है कि यार ये ना बहुत मेस्ड अप है. लेकिन जोक्स अपार्ट, हम मैरिज को अक्सर सिर्फ लव स्टोरी की तरह देखते हैं, जबकि असली शादी जो है वो शायद लव से ज्यादा पार्टनरशिप है. आपको साथ में बिल्स देखने होते हैं, घर चलाना होता है, कभी करियर के डिसीजंस लेने होते हैं, कभी फैमिली इश्यूज संभालने होते हैं, और कभी सबसे इंपॉर्टेंट एक ही इंसान की वही हैबिट बार बार देखनी होती है जो बहुत पहले बहुत क्यूट लगा मतलब लगती थी लेकिन अब नहीं लगती. इसीलिए शायद मैरिज में प्यार जरूरी है लेकिन सिर्फ प्यार काफी नहीं है. सो दिस इज वॉट माई पॉइंट. सो यू टेल मी, थोड़ी सी फ्रेंडशिप चाहिए, थोड़ा सा ह्यूमर चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, और सबसे ज्यादा एक दूसरे को बदलने के बजाय समझने की कोशिश चाहिए, क्योंकि दो लोग ना परफेक्ट तो हो ही नहीं सकते और एक जैसे तो बिल्कुल नहीं हो सकते. बस कभी कभी दोनों को डिसाइड करना पड़ता है कि आज कौन सही है और कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो यू टेल मी कि जो भी मैरिड लिसनर्स हैं आज यहाँ पर, ऑनेस्टली बताइए कि आपके हिसाब से मैरिज में सबसे जरूरी क्या है, लव, ट्रस्ट, फ्रेंडशिप या फिर पेशेंस. और अनमैरिड लिसनर्स के लिए आप अपना आंसर जो है वो एक्सपीरियंस से नहीं दे सकते लेकिन कॉन्फिडेंस से जरूर दे सकते हैं. 3311063 इज माय नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.

0: Listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: From vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं. अब कतर में shopping करें best prices पर. सिर्फ Nesto Hypermarket में. Groceries हो, fresh food हो या daily essentials, सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर. तो अपनी shopping को बनाएं और भी profitable. Nesto Hypermarket, 152nd branch now open in Old Passport Office, Algarafa.

0: इमेजिनेशन करते हैं, आज शाम अचानक आपके पास आपका 18 ईयर ओल्ड वर्जन बैठा है, वही चेहरा, वही सपने, वही छोटी छोटी इनसिक्योरिटीज, वही कंफ्यूजन कि आगे जिंदगी में क्या होगा, और वो आपको देखकर पूछता है तो हम ठीक है ना, और आप क्या बोलोगे। ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियोज हैं जो इंस्टाग्राम पर देखे हैं, जो अपने ही सेल्फ से 10 साल पुराना बात करते हैं और फिर कहते हैं कि यार ये 10 साल पहले मैं कितना डरपोक थी। सो हर दोस्त हमेशा दोस्त नहीं रहेगा, 10 साल के बाद हर रिजेक्शन तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करेगा, हर चीज अभी फिगर आउट करना भी जरूरी नहीं है, या शायद बस आप उसे कहना चाहोगे कि यार रिलैक्स, हम यहां तक आ गए हैं। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। लेकिन अगर मैं अपने 10 साल पुराने वर्जन की बात करूं तो मुझे लगता है कि उस टाइम पर आई वॉज मोर फ्री, जो मुझे लगता था कि यार जो होगा देखा जाएगा। लेकिन बाद में धीरे धीरे इतनी सारी चीज़ें चेंज हुई कि कॉन्वर्सेशंस जो हैं वो सीधे ऐसे चेंज हो गई कि नहीं यार लाइफ में ये करना है वो करना है। सो 18 ईयर ओल्ड सेल्फ भी आपको बहुत कुछ पूछने वाला है, सपने पूरे हुए या नहीं, तुम अभी म्यूजिक सुनते हो या नहीं, तुम इतना ओवर थिंक करते हो या पहले की जरह, या फिर सब छोड़ दिया है। सो यू टेल मी कि अगर आप अपने 18 ईयर ओल्ड सेल्फ से मिलोगे तो सबसे पहले उसे क्या बताओगे। सो बस एक सेंटेंस में आपको आंसर देना है। 3311063 इज माई नंबर एंड यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: 1940s की सादगी से लेकर 70s के रेट्रो रेवोल्यूशन तक, मॉडर्न पॉप सॉन्ग्स के स्वैग से हिंदी सिनेमा के कल्ट क्लासिक्स तक, वक्त बदलता रहा पर एक आवाज हमेशा सबसे आगे रही,
2: जवान में जान ने मन,
1: आशा ताई की। आज आशा भोसले जी की बर्थ एनिवर्सरी पर सुनिए उनके सुपर हिट गाने ओनली ऑन रेडियो ऑलिव।
3: कह दूं तुम्हें
4: हाँ
3: या चुप रहूं
4: ना,
3: दिल में मेरे आज क्या है,
4: क्या है

लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है इन एसोसिएशन विद

0: हल्की बातें करते हैं आप, यू नो मेरे जाने का टाइम हो गया है। सो आजकल ना हर इंसान की जिंदगी में इतना ड्रामा है कि कभी कभी लगता है कि नेटफ्लिक्स वाले हमारे घर के बाहर कैमरा लगाकर बैठे हैं। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। सो आज एक गेम खेलते हैं। अगर आपकी पर्सनैलिटी एक OTT जॉनर होती तो क्या होता, मतलब आप कॉमेडी की तरफ जाते या फिर आपको लगता कि यार प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो जोक निकल ही आता है, या आप थ्रिलर की यू नो तरफ जाते, लोग आपको देखकर आज तक समझ नहीं पाए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, या फिर रोमांस, छोटी छोटी चीजों में आप इमोशंस ढूंढ लेते हो, या ड्रामा, एक छोटी सी बात को 3 एपिसोड्स तक आप डिस्कस कर लेते हो, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री, हर बात का पूरा बैकग्राउंड, हिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स और एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए। और एक और कैटेगरी है विच इज हॉरर, क्योंकि कुछ लोगों की मंडे मॉर्निंग वाली जो शक्ल है वो देख कर ही डर लगने लगता है। लेकिन मजाक से अलग बात यह है कि हम सब एक ही जॉनर नहीं है। ऑफिस में शायद आप सीरियस ड्रामा है, दोस्तों के साथ फुल कॉमेडी, घर पर इमोशनल फैमिली फिल्म, और अकेले में शायद बिल्कुल एक अलग कहानी। सो यू टेल मी कि आपकी अगर लाइफ OTT होती, OTT जॉनर होती, तो वो कौन सा जॉनर होता। फॉर नाउ आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा, चाहे आपकी लाइफ में कॉमेडी है, रोमांस है, थ्रिलर है, ड्रामा है, डॉक्यूमेंट्री है, जस्ट लेट मी नो 3311063 पर, और कल फिर उन्हीं मूवीज के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।
1: Radio Olive Park. Fresh, fresh, fresh, fresh, fresh. Ye gana fresh. Fresh song of the hour. Ye. Yeah,

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: बैक फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में। ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर। तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल। नेस्टो हाइपरमार्केट 152nd ब्रांच नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस अलगराफा।
2: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटोई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

0: back from vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में shopping करें best prices पर, सिर्फ Nesto Hypermarket में। Groceries हो, fresh food हो या daily essentials, सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर। तो अपनी shopping को बनाएं और भी profitable। Nesto Hypermarket, 152nd branch now open in Old Passport Office, Algarafa.
1: गजलों की गहराई हो या बॉलीवुड के गानों का बेहिसाब चुलबुलापन, आशा जी ने जिंदगी के हर रंग को अपनी आवाज से सजाया है। तो आइए आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर रेडियो ऑलिव पर सुनते हैं आशा ताई की जिंदगी की कहानी उन्हीं की जुबानी।
2: अपना दुख तो कोई लेता नहीं, मुझे बुखार है आप नहीं ले सकती, मुझे सहना है। तो ये सहने की जो चीज है वो बहुत अच्छी चीज है। लोगों में जाके आप हंसिए, दूसरों को हंसाइए, खुश रहिए, तो सब आपको प्यार करते हैं। और आप दूसरे के काम आइए, दूसरे की इज्जत कीजिए, दूसरे इज्जत करना बहुत अच्छा, टाइम पे जाना अच्छा, गरीबों का हाल पूछना अच्छा, उसे मदद करनी अच्छी। वो दुनिया में मुझे लगता है इससे सुख कुछ नहीं है।
1: रेडियो ऑलिव के साथ लेट्स सेलिब्रेट द टाइमलेस इमोशन, लेट्स रिलिव द मैजिक दैट शेप्ड जनरेशंस।
3: Hi, मैं हूँ विवेकानंद ओबरॉय। You're listening to Radio Olive, Jio Bindas.
4: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian Radio Network.
5: Olive Music Marathon, एक घंटा non-stop back to back.

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ। ओलिव म्यूजिक मैराथन, एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने।

0: 1940s की सादगी से लेकर 70s के रेट्रो रेवोल्यूशन तक, मॉडर्न पॉप सॉन्ग्स के स्वैग से हिंदी सिनेमा के कल्ट क्लासिक्स तक, वक्त बदलता रहा पर एक आवाज हमेशा सबसे आगे रही,
1: जवान जाने मन
0: आशा ताई की। आज आशा भोसले जी की बर्थ एनिवर्सरी पर सुनिए उनके सुपरहिट गाने ओनली ऑन रेडियो।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM बिंदास ओलिव म्यूजिक मैराथन एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू

आप सभी का स्वागत है स्वैग के साथ स्वागत है। यह है रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक साथ बैठकर चलिए शुरू करते हैं ऑलिव रिचार्ज को, जहां पे गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। तो आप भी अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए, 3311063 पर मुझे मैसेज कीजिए, बताइए मुझे क्या हाल है। और यही बोलते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: गजलों की गहराई हो या बॉलीवुड के गानों का बेहिसाब चुलबुलापन, आशा जी ने जिंदगी के हर रंग को अपनी आवाज से सजाया है। तो आइए आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर रेडियो ऑलिव पर सुनते हैं आशा ताई की जिंदगी की कहानी उन्हीं की जुबानी।
1: ये जरूरी नहीं है कि बहुत ढाई ढाई म्यूजिक हो, और सबसे बड़ी बात है कि बोल अच्छे होने चाहिए। आप देखिए, पुराने गाने आप जब भी सुनते हैं तो आपके लाइफ से मिले जुले बोल होते हैं, तब आप उसको याद भी रखते हैं। अच्छे खूबसूरत बोल समझ में आए, ऐसे बोल होने चाहिए। आजकल बोल इतने बहुत अच्छे नहीं होते हैं। मेरा ज़्यादातर ये ख्याल है कि स्टोरी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि देखिए, घरेलू स्टोरी होती है, बहन का गाना होता है तो राखी का गाना होता है, माँ बेटे का होता है तो लोरी होती है, कुछ अच्छे गाने आ सकते हैं। लेकिन जहाँ मार पिटाई की है, फिल्म हीरो आता है दरवाजे लातों से तोड़ता है और ये मारा मरी ढोए ढोए चलता है, उसमें क्या गाने आएंगे ये हमें भी नहीं समझ आती। तो सच्ची सोच के थोड़ा डर सा लगता है, अफसोस होता है। लेकिन सब ये सोचते हैं कि जो चलता है माल वही देना है। मेरा ख्याल है पब्लिक भी इसमें कसूरवार है। अगर जो वो ऐसे गाने ना सुने और कहें कि हमें पसंद नहीं, तो उनको चेंज करना पड़ेगा। पब्लिक भी कहती नहीं या सुनती हैं, लेकिन हमेशा हमसे कहा जाता है कि भाई हमें पुराने गाने पसंद हैं, हम पुराने गाने सुनते हैं। फिर ये क्या हो रहा है मैं नहीं समझ पाती। रात के बाद दिन आता है, फिर दिन के बाद रात, ये साइकिल है, चलती रहती है। तो आज जो स्टाइल चल रहा है, कल जो था वो आज नहीं है, तो आज है वो भी नहीं रहेगा। फिर से मेरा ख्याल है लोग क्लासिकल के तरफ झुकेंगे और क्लासिकल पे बेस गाने आएंगे जरूर, मुझे ऐसा लगता है।
0: रेडियो ऑलिव के साथ लेट्स सेलिब्रेट द टाइमलेस इमोशन, लेट्स रिलिव द मैजिक दैट शेप्ड जनरेशंस।
2: हाय, मैं हूं दिव्या दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।
3: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
4: हमने लगा और हो जा रही चार।
5: This hour is brought to you by
6: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैं एक चीज ऐसे सोच रहा था, ठीक है। तो बेसिकली मैं बचपन में एक कार्टून देखता था, ड्रैगन बॉल जी करके, उसमें एक सीन आता है जहां पे गोकू करके जो कैरेक्टर है वो इंस्टेंटली ऐसे टेलीपोर्ट कर जाता है, और मैं भी ऐसे सोचा कि यार ये काफ़ी कूल चीज़ है, अगर हमारे पास ऐसा स्किल होता कि बैठे बैठे किसी और जगह पे हम पहुंच सकते हैं, टेलीपोर्ट कर सकते हैं, वो भी इंस्टेंट में, तो कितना मज़ा आ जाता, कितनी जगह घूम लेता मैं, ट्रैवल कॉस्ट कितना कम हो जाता, कितना झंझट कम हो जाता। मगर सैडली हम ये सब कर नहीं सकते, बट ऐसे ही मैंने सोचा कि यार चलो ज़रा इमेजिन करते हैं कि अगर मौका मिलता है इंस्टेंटली टेलीपोर्ट होने का तो कहाँ कहाँ जाते। आप मुझे बताइए, अगर आपको ये मौका मिलता है, ये गिफ्ट मिलता कि आप बैठे बैठे कहीं भी जा सकते हो, ठीक है, किसी भी देश में जा सकते हो, कहीं पे भी घूम सकते हो, तो आप सबसे पहला डेस्टिनेशन कौन सा चूज करोगे? 3311106 पर मुझे मैसेज कीजिए, और यही बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे थोड़ी देर पहले हमने बात की थी इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन के बारे में। कुछ लोगों ने मैसेज किया है मुझे, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने फेवरेट डेस्टिनेशंस के बारे में बताया। स्विट्जरलैंड बोला है, स्पेन बोला है किसी ने, कुछ लोग बोले जॉर्जिया है, यूएसए बोला कुछ लोगों ने, किसी ने बोला है कि मुझे जापान जाना है। तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के बारे में ऐसे जो है लोगों ने मैसेज किया है। अब देखिए, इंस्टेंटली हम टेलीपोर्ट तो नहीं कर सकते, मगर हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे बैठे दूसरे सिटीज को एक्सप्लोर जरूर कर सकते हैं। कैसे? तो एक वेबसाइट है वर्चुअल वेकेशन करके, तो इस वेबसाइट के थ्रू आपको एक वर्चुअल वॉकिंग टूर मिलता है डिफरेंट डिफरेंट सिटीज का। आप सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि बर्लिन, मिलान, मॉस्को, बार्सिलोना, बीजिंग, डमास्कस, न्यूयॉर्क, शिकागो, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सिटीज उसमें जो है लिस्टेड है, जहां पे आपको फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू जो है दिखेगा। ऐसा लग रहा है कि आप खुद चल के जा रहे हो, आप बर्लिन की सड़कों से ऐसे चल रहे हो करके ऐसा एक फील आपको जो है मिलेगा। तो वर्चुअल वेकेशन करके एक वेबसाइट है, उसे चेकआउट कीजिए। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: 1940s की सादगी से लेकर 70s के रेट्रो रेवोल्यूशन तक, मॉडर्न पॉप सॉन्ग्स के स्वैग से हिंदी सिनेमा के कल्ट क्लासिक्स तक, वक्त बदलता रहा पर एक आवाज हमेशा सबसे आगे रही, जवान जान मन आशाताई की। आज आशा भोसले जी की बर्थ एनिवर्सरी पर सुनिए उनके सुपरहिट गाने ओनली ऑन रेडियो ऑलिव।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैं तो कहता हूं कि भाई कंपेयर करना चाहिए। आप अपने चॉइसेस को कंपेयर कीजिए कि आपके लिए कौन सा अच्छा है करके। खाना जो आप खा रहे हैं उसे कंपेयर कीजिए कि ये मेरे लिए अच्छा है या ये मेरे लिए अच्छा नहीं है करके। आपके लिए जो अच्छा है जो बुरा है उनको कंपेयर करिए। एक वाइस चॉइस जो है आपको लेना पड़ेगा इस मामले में। मगर अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करना है। अपने आप को अगर कंपेयर करना है तो खुद से कंपेयर करना है, कल मैं कैसा था, आज मैं कैसा हूँ और आने वाले दिन में मुझे क्या होना है करके, ये कंपैरिजन चलता है। बाकी सारे चीज़ों में बिंदास कंपेयर करिए भाई। कौन सा शर्ट मुझ पे जच रहा है, कौन से शूज़ अच्छे लग रहे हैं। तो जब डिफरेंट वेराइटीज़ आपके सामने आएगी तो आप थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता था कभी कभी चूज़ करना, मगर एक रिफाइंड चॉइस हमेशा आपको सेटिस्फैक्शन देती है। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर। ये गाना

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुदेव, रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर, जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Alkhol.
2: गजलों की गहराई हो या बॉलीवुड के गानों का बेहिसाब चुलबुलापन, आशा जी ने जिंदगी के हर रंग को अपनी आवाज से सजाया है। तो आइए आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर रेडियो ओलिव पर सुनते हैं आशा ताई की जिंदगी की कहानी उन्हीं की जुबानी।
3: चुनरिया और रात की रानी, उसमें सोलो गाना था मेरा, जल जल के गिरे हैं परवाने दो चार इधर दो चार उधर।
4: गाकर सुनाइए अगर याद आ रही है।
3: अच्छा हाँ।

0: ये गाना था।
1: अच्छा जी, ये हंसराज जी बहल की जी की धुन पर रात की रानी से आप गीतों की रानी बन गई। उसके बाद आपने बीसियों सैकड़ों हजारों गीत गाए, अब तक कुल कितने गीत गाए होंगे?
0: मैंने गिन के नहीं रखा है।
1: अच्छा।
0: लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मैंने बहुत ज्यादा गाए, क्योंकि मेरे गाने का रेशो बहुत, मतलब तीन गाने चार गाने, बल्कि EMI ने मुझे जब गोल्ड डिस्क दिया है तब उसमें उन्होंने खुद कहा है, मिस्टर ब्राउन ने, कि मेरे दिन के सात गाने मैंने गाए हैं, ये रिकॉर्ड है।
1: और हर एक संगीतकार के साथ ST बर्मन से लेकर मदन मोहन जी, खयाम, RD बर्मन, OP नैयर, ये बताइए कि किसी एक म्यूजिक डायरेक्टर ने आपको जज्बाती तौर पर अपनी तरफ खींचा है ज्यादा?
0: जी हाँ, जो कि जिन्होंने मुझे प्लेबैक सिंगिंग क्या वो सिखाया, और बहुत ज्यादा अपनी लड़की जैसा प्यार करते थे
1: जी,
0: और ये बताते थे कि आप आर्टिस्ट बोलता कैसे है, दिखता कैसे है, उसकी फिगर कैसी है, ये सब चीज को देख के गाना गाओ। और ये उन्होंने सिखाया, जिनका नाम है ST बर्मन
1: जी,
0: दादा कहते थे।
2: रेडियो ऑलिव के साथ लेट्स सेलिब्रेट द टाइमलेस इमोशन, लेट्स रिलिव द मैजिक दैट शेप्ड जनरेशंस।
3: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह,
4: गुलराज सिंह,
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3
4: जियो बिंदास।
5: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
6: Humne laga aur ho ja recharge.
7: Olive Recharge.
8: Olive Recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio Bindas.
7: Olive Recharge.
9: This hour is brought to you by
10: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और जब भी आपने देखा होगा कि आसमान में जो है फ्लाइट ऐसे उड़ के जा रहा है, और ऑब्वियसली दोहा में जब हम रहते हैं तो कई दफा हमने ये नजारा देखा होगा कि हमारे सर के ऊपर से फ्लाइट जो है जा रहा है, और रात के टाइम पे जो है उसमें हमें रेड और ग्रीन कलर्स दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है आपने कि रेड और ग्रीन ही क्यों चूज किया जाता है? तो मैं बताता हूँ। सो बेसिकली एयरक्राफ्ट नेविगेशन के लिए इन लाइट्स को जो है बनाया गया है, इन लाइट्स को जो है यूज किया गया है, ताकि एयरप्लेन के पोजीशन को, ओरिएंटेशन को और डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल को रात के टाइम पे या फिर पुअर विजिबिलिटी के टाइम पे अच्छे से समझा जाए। और ये सिस्टम जो है एक फिक्स्ड कलर लाइट चूज करता है, रेड एयरक्राफ्ट के लेफ्ट साइड में, ग्रीन एयरक्राफ्ट के राइट साइड में, और व्हाइट जो है एयरक्राफ्ट के रियर साइड में। ये टेक्नोलॉजी जो है इंटेंशनली सिंपल और स्टैंडर्डाइज्ड की गई है, ताकि पायलट्स को जो है आगे आने वाले एयरक्राफ्ट से पता चले कि हाँ ये किधर जा रहा है, इसका ओरिएंटेशन क्या है, इसका लाइट पैटर्न क्या है, बिना रडार और फिर कम्युनिकेशन के ये फिगर आउट कर सकते हैं। और इसके लिए ये हाई इंटेंसिटी LEDs यूज करते हैं, और या फिर अलग एविएशन अप्रूव्ड लाइट सोर्सेस जो लॉन्ग डिस्टेंस से विजिबल रहते हैं। तो यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: 1940s की सादगी से लेकर 70s के रेट्रो रेवोल्यूशन तक, मॉडर्न पॉप सॉन्ग्स के स्वैग से हिंदी सिनेमा के कल्ट क्लासिक्स तक, वक्त बदलता रहा पर एक आवाज हमेशा सबसे आगे रही, जवान ने जाने मन, आशा ताई की। आज आशा भोसले जी की बर्थ एनिवर्सरी पर सुनिए उनके सुपरहिट गाने ओनली ऑन रेडियो ऑलिव।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आप अपने ऑफिस में रेडियो ओलिव के टीम को इनवाइट करना चाहते हो ताकि हम वहां पे आए, फन करें, एंजॉय करें, आपको एंटरटेन करें, साथ ही साथ रिचार्ज और रीएनर्जाइज करें। तो हैप्पीनेस लॉन्च के लिए रजिस्टर करना मत भूलना। रजिस्टर करने के लिए आपको HL स्पेस आपकी कंपनी का नाम जो है हमारे व्हाट्सएप में भेजना है, विच इज 3311063। हमारे कंपनी से, हमारे साइट से, हमारे टीम से एक मेंबर जो है आपको अप्रोच करेगा, कांटेक्ट करेगा, बात करेगा, डिटेल जो है शेयर करेगा। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आज हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबे रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे काफी इंटरेस्टिंग एक खबर जो है हमारे हाथ में लगी है। चाइना ने जो है एक ऐसी कार बनाई है जो पोर्टहोल्स के ऊपर से हॉप करता है, और तब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि आप गाड़ी रोक चुके हो और फिर गाड़ी हॉप कर रही है। आपकी गाड़ी चलाते वक्त अगर वहां पे सामने एक पोर्टहोल आता है तो वो गाड़ी हल्का सा हॉप करती है ताकि आपको कोई डिस्कम्फर्ट ना हो करके। मैं सोच रहा हूँ कि भाई लाइफ में भी ऐसा कोई एक चाहिए हमें टूल जो प्रॉब्लम्स के सामने से हमें हॉप करने में हेल्प करे और इजीली प्रॉब्लम्स को हम ओवरकम कर पाए। देखिए, प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए प्रॉब्लम के ऊपर से कूदना ज़रूरी है या फिर प्रॉब्लम को फेस टू फेस मिलना ज़रूरी है, ये तो हर इंसान का चॉइस रहता है। मगर टाटा और ऑडी अगर फेस टू फेस आए तो क्या होगा, बताते हैं थोड़ी देर में। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: गजलों की गहराई हो या बॉलीवुड के गानों का बेहिसाब चुलबुलापन, आशा जी ने जिंदगी के हर रंग को अपनी आवाज से सजाया है। तो आइए आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर रेडियो ओलिव पर सुनते हैं आशा ताई की जिंदगी की कहानी उन्हीं की जुबानी।
2: वो बचपन से मुझे एक आदत थी कि फिल्म देखना, गाना सुनना और उसकी नकल करना उन चीजों की, जैसे कोई सिंगर गाए उसका आवाज वैसे निकालने की कोशिश करना, ये सब सबको मतलब घर में था, वैसे मुझे भी था। आपको बताती हूँ एक पिक्चर, इंग्लिश पिक्चर में कैरमन मरांडा करके एक सिंगर थी, वो अजब कपड़े पहनती थी और अजब टोपी में कुछ फल वल लगे होते थे। तो हमारा घर तो क्लासिकल गाने वालों का, लेकिन मैं जब ये गाना घर में आके चिल्ला चिल्ला के गाती थी तो माँ को लगता था ये पता नहीं कहाँ से भूत की तरह कर रही है और माँ मारती थी। तो वो गाना मैं आपको बताती हूँ, वो गाना बाद में मुझे कैसे काम आया वो भी बताती हूँ। मम मम मम मम करो मामा शिबा, ये मैं आके घर में गाऊं और गालियां सुनूं। इसके बाद बहुत सालों बाद मुझे श्री रामचंद्र जी का गाना मिला, तो वो मैं जितना भी गाती थी वो उनको पसंद नहीं आ रहा था, तो मुझे दिमाग में वो औरत आई और मैंने टेक के वक्त गाया, मिस्टर जॉन बाबा खान या लल्ला रोशन दान, ऐसे किया और वो गाना इतना सबको अच्छा लगा कि कहने लगे ये कैसे तुमने किया। तो मैंने तब बताया नहीं कि मैंने कैरमन मरांडा को कॉपी किया। तो इसी तरह अपने गाने को मैंने हर बार चेंज किया, वॉइस को चेंज करना, स्टाइल को चेंज करना।
1: रेडियो ऑलिव के साथ लेट्स सेलिब्रेट द टाइमलेस इमोशन, लेट्स रिलिव द मैजिक दैट शेप्ड जनरेशंस।
3: This is Amira Dastur on Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas.

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था जब टाटा और ऑडी आमने सामने आते हैं तो क्या होगा करके। सो बेसिकली एक इंसिडेंट हुआ इंडिया में, एक टाटा और ऑडी का हेड ऑन कोलिशन हो गया। ठीक है, हेड ऑन कोलिशन, दोनों सेफ हैं, गाड़ी में जो लोग थे सब सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों गाड़ी की सेफ्टी फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए जो भी लोग गाड़ी के अंदर थे वो सेफ हैं। मगर टाटा को ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, टाटा गाड़ी में मतलब हल्के हल्के खरोच खरोच आए हैं, मगर ऑडी के साथ थोड़ा बुरा हुआ भाई। उसका बम्पर अंदर हो गया, टायर थोड़ा अंदर हो गया, फ्रंट एरिया थोड़ा डिफिगर सा हो गया। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि भाई ये टाटा वाले करते क्या है, ये ट्रक बनाते बनाते बनाते कार को भी ट्रक जैसे ही स्ट्रांग बना देते हैं। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
2: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
1: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
2: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें।
1: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: ऑलिव लगा और हो जा रिचार्ज।
0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक रेडियो ओलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो सीधा जाइए इंस्टाग्राम पर, radioolive.qa सर्च कीजिए, वहां पे फॉलोइंग दिख रहा है तो बहुत बढ़िया, आई एम प्राउड ऑफ यू। अगर फॉलो दिख रहा है तो एक बार उस फॉलो बटन को प्रेस कीजिए, फिर हमारे कंटेंट को चेकआउट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें सुनते हुए आप एक वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालिए, टैग कीजिए हमें, हम उस स्टोरी को रीशेयर करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया डिजिटल कॉन्टेस्ट जो है हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आते हैं, आप पार्टिसिपेट कीजिए उसमें, क्योंकि वहां पे गिफ्ट जीतने के मौके भी हैं। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: 1940s की सादगी से लेकर 70s के रेट्रो रेवोल्यूशन तक, मॉडर्न पॉप सॉन्ग्स के स्वैग से हिंदी सिनेमा के कल्ट क्लासिक्स तक, वक्त बदलता रहा पर एक आवाज हमेशा सबसे आगे रही, जवान ने जान ने मन, आशा ताई की। आज आशा भोसले जी की बर्थ एनिवर्सरी पर सुनिए उनके सुपरहिट गाने ओनली ऑन रेडियो ओलिव।

तो भाई धीरे धीरे टाटा बाय गुड बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 5 बजने वाले हैं, 3 घंटे खत्म हुए, मगर कोई गल नहीं जी। जाने से पहले आपसे यही दरख्वास्त है कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने खास लोगों का ख्याल रखिए, और हमें जरा दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास। रेडियो

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
2: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर
1: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
2: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें।
1: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।

झूठ बिल्कुल मत बोलना, ठीक है यार। थोड़ा सा भांगड़ा, थोड़ा सा डांस, तो यार ये गाने, मतलब ऐसे वाले गाने सुन के निकल ही जाता है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कसोशन शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा जो है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, वो मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखी है। अब देखो यार, आज बहुत सारी बातें करने वाले हैं हम, आराम से करेंगे, लेकिन अमेजिंग वाले गाने भी सुनेंगे, क्योंकि आज आशा भोसले जी का, आशा ताई जी की जो है आज बर्थ एनिवर्सरी है, एंड उनके जाने के बाद उनकी पहली बर्थ एनिवर्सरी है, तो हम उनके ही गाने जो है आज सारा दिन आपको सुना रहे थे एंड आगे भी सुनाएंगे। सो एंजॉय कीजिए आशा भोसले जी के गाने, एंड उसके साथ कुछ नए ट्रैक्स, कुछ चटपटे ट्रैक्स जो है वो भी हम एंजॉय करने वाले हैं। सो बस आपको जो है आराम से बैठना है, वॉल्यूम बढ़ाकर रेडियो ऑलिव ट्यून इन करके जो है मतलब चिल करना है, बस वाइब में जो है रहना है। बाकी 3311063 पर अगर आप मुझे हाय हेलो या गुड इवनिंग कर देंगे तो और अच्छा लगेगा मुझे। सो आपकी कशिश को जल्दी से एक मैसेज भेज दो, उसके बाद जो है थोड़ी सी देर में बात करेंगे हम कि मौसम का क्या मामला हो रहा है। फिलहाल तारे गाना जो है आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर ये वाला गाना जो है इसे एंजॉय कीजिए, और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

गवाया इस कदर के पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।

0: Trek. Brought to you by Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 5:10 दैट इज 5:10 स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास
2: बैक फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में ग्रोसरीज हो फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल नेस्टो हाइपरमार्केट 152nd ब्रांच नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस अलगराफा
3: गजलों की गहराई हो या बॉलीवुड के गानों का बेहिसाब चुलबुलापन आशा जी ने जिंदगी के हर रंग को अपनी आवाज से सजाया है तो आइए आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर रेडियो ऑलिव पर सुनते हैं आशा ताई की जिंदगी की कहानी उन्हीं की जुबानी
4: कभी मुझे अपने घर वाले पूछते हैं कि तू कौन है तुझे पता है क्या तू क्यों है मैंने कहा कौन है तो मुझे बताओ कौन हूँ मैं तो वो लोग बोलते हैं कि तुम आशा भोसले हो
5: जी
4: मैंने कहा मैं आशा हूँ सिर्फ आशा भोसले ये अलग भोसले मतलब क्या कहना चाहिए कि नाम के वजह से है वो है तो वैसे मैं जो आशा हूँ वो किसी ने पहचाना ही नहीं अभी तक जो आशा है वो आशा बहुत सिंपल बहुत सादी घरेलू औरत है खाना बनाने वाली औरत है ये कोई जानता ही नहीं है कि मेरा दिल क्या है लेकिन गाना है जो बचपन से मिला है वो गाती चली आ रही हूँ
3: रेडियो ऑलिव के साथ लेट्स सेलिब्रेट द टाइमलेस इमोशन लेट्स रिलिव द मैजिक दैट शेप्ड जनरेशंस
6: हाय दिस इज कैलाश खेर एंड यू आर लिसनिंग टू कतार्स फर्स्ट हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव
7: बातें नहीं एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ऑलिव पर जियो बिंदास
0: Zabardast evening. Make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

0: देखो झूठ बिल्कुल भी मत बोलना, मुझे सच सच बताओ कि एक ना एक बार जो भी इंसान प्लेन में बैठकर अपनी कंट्री से जो है कतर आता है और प्लेन से नीचे देखते हुए समुद्र दिखता है, यू नो ओशन दिखता है, तो एक ना एक बार ये वाला गाना मन में जरूर आता है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कसु सेंचो, आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखिए यार, हम बात कर रहे थे मौसम के मामले पर कि आखिर इस मौसम का मूड कैसा है। देखो मौसम का मूड कैसा भी हो, हमारा मूड जो है थोड़ा थोड़ा बेटर हो रहा है क्योंकि मौसम थोड़ा थोड़ा बेटर हो रहा है। कल खैर जब मैं शो ख़त्म करने के बाद अपनी बिल्डिंग से बाहर निकली तो ह्यूमिडिटी थी एंड एक अलग टाइप की ब्रीज जो है वो भी चल रही थी, लेकिन आज अभी तक तो मुझे जो है मौसम अच्छा ही लग रहा है। 39 डिग्री सेल्सियस इस वक्त का टेम्परेचर है दोहा में, आज का हाईएस्ट टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस था, आज का लोएस्ट टेम्परेचर जो है वो 34 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है एंड थोड़ी सी ही देर में जो है सनसेट होने वाला है। तो बस यू नो द ड्रिल, आपको अपना फ़ोन उठाना है अगर आप सिग्नल पे खड़े हैं, गाड़ी अपना पार्क कर रहे हैं या बस रोड पर खड़े हुए हैं, तो जल्दी से आसमान की यानी सुर्ख लाल आसमान की एक प्यारी सी फोटो खींच के मुझे भेज दीजिए ताकि मेरी वॉलपेपर बदलने में मेरी थोड़ी सी मदद हो जाए। अभी पिछले इतने दिनों में एक दो फोटोज़ इतनी अच्छी लगी है मुझे कि मैंने जेन्युइनली अपने डेस्कटॉप का जो है उसे बना दिया है वॉलपेपर। पर आप लोग मुझे अगर इस बिना खिड़की वाले स्टूडियो से जो है बाहर का नज़ारा अगर दिखा देंगे मेरे सीट पे बैठे बैठे तो कितना बढ़िया जाएगा ना। सो जल्दी से 3311063 मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर जल्दी से एक प्यारी सी यू नो सनसेट की फोटो मुझे खींच के भेज दीजिए 3311063 पर। बदले में मैं आपको एक जबरदस्त हिट वाला गाना जो है वो सुनाऊंगी एंड बाकी आशा भोसले जी के अमेजिंग वाले ट्रैक्स जो हम आज सारा दिन एंजॉय कर ही रहे हैं। तो सबसे पहले जबरदस्त हिट में रात भर वाला गाना जो आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर अरिजीत सिंह की आवाज में, श्रेया घोषाल जी की आवाज में, हीरोपंती मूवी से। कुछ लोगों ने ऑलरेडी फोटोज भी शुरू कर दी है, आप किसकी किसका इंतजार कर रहे हैं? 3311063 इज द नंबर।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।
2: अभी बजाएगा ना भिड़ो
0: रात भर, एंजॉय कीजिए गाना और कहते रहिए जियो बंदा।

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas. टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास।
2: Zabardast evening. Make you drive golden with.
3: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

0: मेरे नॉस्टैल्जिया को ट्रिगर करने वाला गाना आ गया था आपकी रेडियो सेट्स पर। गोरे गोरे से छोरे आपने एंजॉय किया रेडियो ऑलिव पर। मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने अपने कंधों पर उठाया हुआ है। एंड जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि किसने मुझे स्टूडियो में बैठे बैठे बाहर का मौसम देखने का सौभाग्य यानी मौका दिया है। सबसे पहले तो काश आपका सच में नाम काश है। ओके एंड बहुत ही खूबसूरत फोटो इन्होंने जो है वो भेजी है, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एडिट करके भेजी है, लेकिन थैंक यू सो मच। उसके बाद रामेश्वर जी ने भी एक बहुत ही प्यारी फोटो मुझे भेजी है। उसके बाद अबरार जी ने एक बहुत ही अच्छी फोटो मुझे भेजी है। यैन थापा जी ने बहुत अच्छी फोटो भेजी है। उसके बाद मकसूद अहमद जी ने बहुत अच्छी फोटो भेजी है। एंड वहीद अहमद जी ने गाना प्ले करने की रिक्वेस्ट जो है वो करी है। मैं कोशिश करूँगी मकसूद जी वाहिद जी कि हम ये प्ले कर लें। एंड मोहम्मद वासीफ जी ने जो है एक बहुत ही प्यारी फ़ोटो भेजी है, रोड की फ़ोटो है वो बेसिकली सन से ज़्यादा पर बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच। असमा जी ने भी गुड इवनिंग कहा है, गुड इवनिंग। एंड ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अलग अलग फोटोज़ भेजी है, थैंक यू सो मच। एंड बहुत ही खूबसूरत फ़ोटोज़ लेते हो यार आप लोग, मतलब मुझे सच में बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि मेरे स्टूडियो में खिड़की नहीं है, बिकॉज इस विंडो के ज़रिए मतलब इस अपने डेस्कटॉप के ज़रिए मैं पूरी बाहर की सारी हलचल पर नज़र रख पाती हूँ सिर्फ आप लोगों की वजह से, तो थैंक यू सो मच। वैसे इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को जो है अच्छे अच्छे गाने सुनाने चाहिए, इसलिए आशा भोसले जी के बर्थडे पर जो है मैं एक प्यारा सा गाना आपको सुना रही हूँ, सो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए। एंड आशा भोसले जी की बर्थ एनिवर्सरी पर हम उन्हें विश कर रहे हैं एंड उनके गाने सुनकर उन्हें याद कर रहे हैं। सो स्टे ट्यून रहिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: 1940s की सादगी से लेकर 70s के रेट्रो रेवोल्यूशन तक, मॉडर्न पॉप सॉन्ग्स के स्वैग से हिंदी सिनेमा के कल्ट क्लासिक्स तक, वक्त बदलता रहा पर एक आवाज हमेशा सबसे आगे रही,
2: जवान ने जाने मन
1: आशा ताई की। आज आशा भोसले जी की बर्थ एनिवर्सरी पर सुनिए उनके सुपरहिट गाने ओनली ऑन रेडियो ऑलिव।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
2: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर
1: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
2: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें।
1: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: रेडी टू लर्न टू प्ले टू ग्रो विद मजराती।
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ। ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस।
4: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास।
5: Zabardast evening. Make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop.

0: नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास
1: Here we go.

0: गाना खत्म पैसा हजाम।
1: You are listening to Qatar's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas.
2: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
3: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
2: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
3: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें।
2: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।

कुड़ी देखिए कितना भी सैटरडे सैटरडे कर ले, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एकदम पीक वीक चल रहा है अभी, यानी एकदम काम जो है वो सर पर है। अभी तो वीकेंड की सोच भी नहीं जा सकती, अभी अभी शुरू हुआ है वीक हमारा। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहां पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखी है। अब देखिए यार, वीकेंड से और वीक से काम से मुझे ये याद आया कि यार मैं जो है हर चीज में काफी स्ट्रांग बन जाती हूँ, कि यार मैं मुझे दर्द नहीं होता, मैं ये कर सकती हूँ, मुझे जो है आसानी से कोई अफेक्ट नहीं कर सकता, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। ये बात सिर्फ मुझे पता है कि मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, एंड जब बात आती है एक्सरसाइज करने की तो कहीं ना कहीं विल पावर जो है वो जवाब दे देता है। मतलब आप हर रोज सोचते हो कि यार आज तो एक्सरसाइज कर लेंगे, आज जो बचे हुए स्टेप्स हैं वो पूरे कर लेंगे, लेकिन जो है ऑफिस से जाते जाते हम ऐसे वीक हो जाते हैं ना कि क्या बताऊँ। लेकिन रिसर्च जो है वो ये कहती है कि जो नॉर्मली लोग जिम जाते हैं, ठीक है, जो डेली सुबह सुबह जिम जा रहे हैं, उनका जो बॉडी है वो एंड जो लोग काम करने गए यानी ऑफिस के बाद जिम जाते हैं, इसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। एंड उन लोगों का कॉर्टिसोल लेवल यानी जो स्ट्रेस हार्मोन है वो काफ़ी कम होता है जो ऑफिस के बाद जिम जाते हैं। सो अगर आप वो इंसान हैं जो अपने ऑफिस के बाद यानी ऑफिस में थकने के बाद, ऑफिस में काम करने के बाद जिम जाते हैं या वर्कआउट करते हैं या वॉक करते हैं, तो आप जो है अलग से आए, मतलब आपको जो है एकदम तराशा गया है, बहुत ही प्यार से बनाया गया है। फिलहाल देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इसी बात के साथ मैंने आपको ये हिंट तो दे ही दिया है कि अब आपको जो है ऑफिस के बाद एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो वर्कआउट करना ही करना है। मैं हूँ आपकी कशिश, फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना बंजारे डुओ का आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ स्टे ट्यून रहिए। थोड़ी सी देर में हम खेलने वाले चुटकी भर सॉन्ग, यानी आपको जो है एक गाना सुनाऊंगी मैं और आपको गेस करना होगा। फिलहाल ये गाना एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: Check. Brought to you by Dalat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
1: तो जी वक्त हो गया है आपको वक्त बताने का. स्टूडियो क्लॉक में इस वक्त हो रहे हैं 6:10. दैट इज 6:10. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
2: बैक फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन, तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं. अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर, सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में. ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर. तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल. नेस्टो हाइपरमार्केट, 152nd ब्रांच, नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, अलगराफा.
3: गजलों की गहराई हो या बॉलीवुड के गानों का बेहिसाब चुलबुलापन, आशा जी ने जिंदगी के हर रंग को अपनी आवाज से सजाया है. तो आइए आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर रेडियो ऑलिव पर सुनते हैं आशा ताई की जिंदगी की कहानी उन्हीं की जुबानी.
4: ये हर एक के जीवन में होना चाहिए कि संतो हम कुछ नहीं लाए थे, कुछ लेके नहीं जाएंगे. जितना अच्छा करते कर सकते हो वो करो, वो ही जाएगा आपके साथ. दूसरे का दिल मत दुखाओ, किसी के हाय मत लो, और जितना अच्छा कर सकते हो करो. रुपए में चार आने लोगों को दो, लोगों को मदद करो. ये करने से आपके मन को भी शांति मिलेगी और आपका ऊपर जाने का रास्ता भी साफ हो जाएगा.

0: रेडियो ऑलिव के साथ लेट्स सेलिब्रेट द टाइमलेस इमोशन लेट्स रिलिव द मैजिक दैट शेप्ड जनरेशंस
1: आई रेडियो ऑलिव 106.3 लिसनर्स दिस इज रणवीर सिंह स्टे ट्यून्ड
2: बातें नहीं एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ऑलिव पर जियो बिंदास
3: Zabardast evening. Make you drive golden with.
4: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

पहले जो है हम सैटरडे सैटरडे कर रहे थे, अब जुम्मे की रात वाला गाना जो है वो आ गया है। ये प्लेलिस्ट को क्या हो गया है? प्लेलिस्ट ने आज मुझे ऐसा लगता है नाश्ते में कैलेंडर खाया है। कभी कभी उल जलूल बातें कर देती हूँ मैं, लेकिन आपको बस हंसाने के लिए करती हूँ यार। देखो मुझ में ना बहुत इंटेलिजेंट पना है, लेकिन मैं बस वो दिखाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि देखो इस दुनिया में इंटेलिजेंट लोगों की कोई कमी नहीं है। हर दूसरा इंसान आपको ज्ञान देने के लिए रेडी बैठा है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो खुद स्टूपिड बन के जो है आपको हंसाने की कोशिश करते हैं, और मैं उनमें से एक हूँ। मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, लेकिन मैं उनमें से एक हूँ। एंड मैं जो है आपके लिए हर रोज एक अमेजिंग वाला गेम लेकर आती हूँ, उसका नाम है चुटकी भर सॉन्ग। वेलकम जी, 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कशिश, एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का जो जिम्मा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने इन नाजुक कंधों पर मैंने उठा ली है। एंड आज भी आपके लिए एक बहुत ही क्यूट सा जो गाना है वो मैं लेकर आई हूँ, एंड आशा भोसले जी की आज बर्थ एनिवर्सरी है, सो क्यों ना मैंने सोचा कि उन्हीं के इतने सारे अमेजिंग गानों में से एक गाना चुना जाए। सो चाहे आप एक बूमर है, मिलेनियल है, जिलेनियल है, आप ये गाना जो है आराम से पहचान जाएंगे, क्योंकि हर एरा में जब भी किसी ने किसी को रोकने की कोशिश करी है, जब भी जो है आपने किसी को मिस किया है, एंड जब भी आप फ्लाइट में बैठ के अपने घर से कतर आए हैं, या कतर से जहां पर आपका घर है और आप कहीं और गए हैं, तो आपने ये वाला गाना एक बार इमेजिन ज़रूर किया है, आपने ज़रूर फील किया है।

पहचान गए गाना? यही आज का चुटकी भर जाओ। 3311063 इज द नंबर। जल्दी से बता दो मुझे कि ये जो गाना है कौन सा है, इस गाने का नाम क्या है, और अगर अभी तक आपको समझ नहीं आया तो लो एक और बार वॉल्यूम बढ़ाकर कान लगाकर ध्यान लगाकर जरा सुनो और बताओ मुझे कि ये गाना जो है इसका नाम क्या है।

0: 3311063 नंबर जल्दी से ऑडियो नोट भेज दो या फिर आप मैसेज लिखकर भेज सकते हो, जैसी मर्जी है वैसे आप आंसर भेज दीजिए। देखिए बस मुझे इतना जानना है कि क्या आप ओजी बॉलीवुड फैन हैं या नहीं है। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, वॉल्यूम बढ़ाकर इसे भी एंजॉय कीजिए और मैसेज कीजिए यार।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।
0: मैं हूँ आपकी कशिश सीओ बिंदास।

0: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: रेडी टू लर्न, टू प्ले, टू ग्रो विद मजराती।
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करे डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ। ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस।
3: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
6: लुलू, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

जितने भी लोग अपने प्यार का इजहार करने का सोच रहे हैं, आई लव यू क्या होता है? क्या होता है आई लव यू? ये कहो ना कि लेके बारात घर तेरे आऊंगा मैं, इससे ज्यादा बड़ी चीज और क्या हो सकती है? अगर आप किसी लड़की को इस गाने पे जो है प्रपोज करेंगे, वो मना कर ही नहीं पाएगी, ट्रस्ट मी। वेलकम टू 106.3 रेडियो ओलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ मैं जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पे आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखी है। एंड हम बात कर रहे थे चुटकी भर सॉन्ग की, जहाँ पर एक चुटकी सॉन्ग की कीमत आपको मुझे बतानी है, कीमत नहीं बताना है कि उस गाने का जो है नाम क्या है। एंड आशा भोसले जी की बर्थ एनिवर्सरी पर ये जो गाना है ये मैंने आपको सुनाया था।

0: यार ये सिर्फ एक नॉर्मल गाना नहीं है, ये एंथम है उन सब लोगों के लिए जो अपने प्यार से मिलने के लिए जाते हैं एंड फिर उन्हें जो है वक्त पे वापस आना पड़ता है, छोड़ के आना पड़ता है एंड ये वादा देके आते हैं कि यार देखो हम लौट कर आएंगे। अगर आपने पहचान लिया है तो आप ओजी बॉलीवुड फैन है हमारे लिसनर्स की तरह। इमाज जी ने एक ऑडियो भेजा है, अजीत जी ने एक जो है ऑडियो भेजा है, आई एम श्योर इसमें जो है सही सही आंसर होंगे। आसमा जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, सूर्य जी ने भी आंसर दिया है, अब्दुल रहमान जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आंसर जो है वो मैं थोड़ी सी देर के बाद बताने वाली हूँ, तो अभी भी आपके पास मौका है इस गाने को अगर पहचान लिया है तो 3311063 पर जो है जल्दी से मैसेज करके मुझे बता दो। फिलहाल आशा भोसले जी की बर्थ एनिवर्सरी पे उनका सॉन्ग स्पेशल जो है आपके रेडियो सेट्स पर आ रहा है, वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास।
1: 1940s की सादगी से लेकर 70s के रेट्रो रेवोल्यूशन तक, मॉडर्न पॉप सॉन्ग्स के स्वैग से हिंदी सिनेमा के कल्ट क्लासिक्स तक, वक्त बदलता रहा पर एक आवाज हमेशा सबसे आगे रही,
2: जवान ने जाने मन
1: आशा ताई की। आज आशा भोसले जी की बर्थ एनिवर्सरी पर सुनिए उनके सुपरहिट गाने ओनली ऑन रेडियो ऑलिव।

0: दीजिए एक बढ़िया वाली ताली अगर आपने हमारे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, जहां पर हमने जो है चुटकी भर सॉन्ग आपको सुनाया था एंड आपने उसका बिल्कुल सही सही जवाब दिया है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूं आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूं जबरदस्त इवनिंग, जहां पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पांसिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखी है। एंड थोड़ी देर पहले आशा भोसले जी की आवाज में अभी ना जाओ छोड़कर वाला जो गाना है, बहुत ही खूबसूरत गाना है ये, मैंने आपको सुनाया था उसका एक चंक सुनाया था आशा भोसले जी की आवाज में एंड आप सबने बिल्कुल सही आंसर दिया है। एंड अजीत डेविड जॉन जी ने जो है बहुत डिटेल्ड आंसर दिया, थैंक यू सो मच। और इमाद जी ने एज यूजुअल गाकर सुनाया है ये गाना जो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, सो थैंक यू सो मच गाइज। फिलहाल जो है ऑल द फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर सुनने का वक्त हो गया है, सो वॉल्यूम बढ़ाकर ये गाना जो है ये आप इंजॉय करो आपकी कशिश के साथ। स्टे ट्यून रहो और कहते रहो जियो बिंदास।
1: Song of the Hour.
2: Yeah, Ghana.

From vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में shopping करें best prices पर। सिर्फ Nesto Hypermarket में। Groceries हो, fresh food हो या daily essentials, सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर। तो अपनी shopping को बनाएं और भी profitable। Nesto Hypermarket, 152nd branch now open in Old Passport Office, Algarafa.

0: समन भागे तेरे पीछे, बावरा समन, बावरा समन।
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
2: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है, इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 7:10, दैट इज 7:10। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
3: गजलों की गहराई हो या बॉलीवुड के गानों का बेहिसाब चुलबुलापन, आशा जी ने जिंदगी के हर रंग को अपनी आवाज से सजाया है। तो आइए आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर रेडियो ऑलिव पर सुनते हैं आशा ताई की जिंदगी की कहानी उन्हीं की जुबानी।
4: अपना दुख तो कोई लेता नहीं, मुझे बुखार है आप नहीं ले सकती, मुझे सहना है। तो ये सहने की जो चीज़ है वो बहुत अच्छी चीज़ है। लोगों में जाके आप हंसिए, दूसरों को हंसाइए, खुश रहिए, तो सब आपको प्यार करते हैं। और आप दूसरे के काम आइए, दूसरे की इज्जत कीजिए, दूसरे इज्जत करना बहुत अच्छा, टाइम पे जाना अच्छा, गरीबों का हाल पूछना अच्छा, उसे मदद करनी अच्छी। उस दुनिया में मुझे लगता है इससे सुख कुछ नहीं है।
3: रेडियो ऑलिव के साथ लेट्स सेलिब्रेट द टाइमलेस इमोशन, लेट्स रिलिव द मैजिक दैट शेप्ड जनरेशंस।
5: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण,
6: दीपिका पादुकोण,
5: रेडियो ऑलिव 106.3।
7: I'm in number one, रेडियो ऑलिव,
8: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
9: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ऑलिव पर। जियो बिंदास,
10: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ।
11: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
12: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
2: बातें नहीं, energy का booster मिल रहा है. क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग. सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास.
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
4: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
5: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: बिंदास है।
1: देखिए जी, बंदा तो बिंदास है, लेकिन ये जो बंदी यहाँ पर बैठकर आपसे बातें कर रही है, ये भी कम बिंदास नहीं है। वेलकम जी, 106.3 रेडियो ऑल पर मैं हूँ आपकी कशिश, एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखी है। अब देखिए यार, ये चीज तो आपने भी नोटिस की ही होगी कि अचानक से चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड, सारे AI जो है वो ठप हो गए, चलना ही बंद कर दिया है, क्योंकि सब लोगों ने अपनी AI इमेज जो है वो बनवानी शुरू कर दी है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ही कोई फंक्शन आता है या ईद आती है तो मेहंदी वालों के जो है वो बढ़ जाता है ना कि यार मेहंदी हमें भी लगवानी है। बिल्कुल उसी तरीके से AI के पास भी सब पहुंच चुके हैं कि ये लो हमारी फोटो, इसको भी 80s वाला बना दो, इसको भी 90s वाला बना दो। मैंने खुद अपनी 3 फोटोज बनवाई है, एंड अपने साथ साथ मम्मी पापा की भी जो फोटो है उसको भी 80s वाला बनाया है, और मेरी मम्मी ने इतनी मेहनत करने के बाद ये कहा हम तो ऐसे ही दिखते हैं, इसमें क्या है, हमारी फोटो में ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। ऑफ कोर्स कुछ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन क्या आपने ये वाला ट्रेंड जो है जो सोशल मीडिया पे इस वक्त काफी वायरल हो रहा है, चाहे कोई ब्रांड हो, चाहे सेलिब्रिटीज हो, चाहे कंपनीज हो, वो अपने एम्प्लॉयज के साथ, सब लोग इस ट्रेंड में जो है वो कूद चुके हैं एंड ये ट्रेंड जो है वो कर रहे हैं। लेकिन द OG 80s 90s 2000 क्वीन आशा भोसले जी का बर्थडे जो है वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब इनका गाना जैसे ही प्ले होता है, किसी AI की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली हम उस टाइम में चले जाते हैं। सो आशा भोसले जी का गाया हुआ मेरा जो फेवरेट सॉन्ग है वो मैं अब आपको सुनाने वाली हूँ। पूरा दिन इंतज़ार किया है मैंने सिर्फ इस गाने के लिए। सो ज़रा वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय कीजिए आशा भोसले जी की आवाज़ में शरारा शरारा। और वैसे शरारा के बारे में जो है कुछ बातें करनी अभी बाकी हैं, सो वॉल्यूम बढ़ाकर पहले ये गाना एंजॉय करो, उसके बाद हम बातचीत जारी रखेंगे। मैं हूँ आपकी कशिश, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
2: 1940s की सादगी से लेकर 70s के रेट्रो रेवोल्यूशन तक, मॉडर्न पॉप सॉन्ग्स के स्वैग से हिंदी सिनेमा के कल्ट क्लासिक्स तक, वक्त बदलता रहा पर एक आवाज हमेशा सबसे आगे रही,
3: जवान जाने मन
2: आशा ताई की। आज आशा भोसले जी की बर्थ एनिवर्सरी पर सुनिए उनके सुपरहिट गाने ओनली ऑन रेडियो ऑलिव।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: From vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में shopping करें best prices पर। सिर्फ Nesto Hypermarket में। Groceries हो, fresh food हो या daily essentials, सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर। तो अपनी shopping को बनाएं और भी profitable। Nesto Hypermarket, 152nd branch now open in Old Passport Office, Algarafa. Nesto,
2: all that you need. बातें नहीं, energy का booster मिल रहा है। क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ
4: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
5: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

की आवाज में एक अलग मूवी का ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ओलिव पर. मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है. अब देखिए यार, कई बार ऐसा होता है कि हम ना कुछ चीज़ें करना नहीं चाहते लेकिन हमारे आस पास के लोगों के प्रेशर में या वो सब कर रहे होते हैं, तो फोमो के चक्कर में यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में हम वो चीज़ें कर बैठते हैं. और ऐसा ही आज मेरे साथ भी हुआ. ये जो हम 70s और 80s वाले ट्रेंड की अभी बात कर रहे थे ना, इस ट्रेंड में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, क्यों. मतलब पहले वो साड़ी वाला ट्रेंड जो है वो सब कर रहे थे, उसके बाद गिबली वाला जो ट्रेंड है वो सब कर रहे थे, तो मुझे ये वाले में ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं था. लेकिन फिर जब सबने करना शुरू किया तो फिर मुझे लगा यार, अगर मैंने नहीं किया तो मैं तो कितनी अनकूल लगूंगी. इसीलिए पीयर प्रेशर में आकर मैंने ये वाला जो ट्रेंड है वो किया. आप इंस्टाग्राम पे जाकर देख सकते हैं, रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर भी देख सकते हैं, हमने पोस्ट किया है सभी आरजेस का. वहां पे आपको 80s वाला अवतार दिख जाएगा. सो जाकर लाइक कीजिए एंड हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को और बाकी सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को जाके जल्दी से फॉलो कर लीजिए. एंड बहुत सारी बातचीत जो है वहां पर भी हम कर सकते हैं. लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है इस ट्रेंड के बारे में, ये आप मुझे बताइए 3311063 पर. फिलहाल आशा भोसले जी का बर्थ एनिवर्सरी जो है वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड बहुत सारे लोग बहुत सारे गाने जो है वो गाकर हमें भेज रहे हैं, तो थैंक यू सो मच. एंड ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सबको आज का ये जो स्पेशल है आशा भोसले जी का जो हम स्पेशल मना रहे हैं वो आपको अच्छा लगा है, सो थैंक यू सो मच. फिलहाल सोनू निगम की आवाज में तबस्सुम गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर. वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास.

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

106.3 रेडियो एलिफ पर मैं हूँ आपकी गजल एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग। ये वाला जो गाना अभी आपने एंजॉय किया ना हैप्पी न्यू ईयर मूवी से, इस पर ना मैंने एनुअल फंक्शन में अपने स्कूल में डांस किया था, तो मैं वो स्टेप जरा याद कर रही थी कि मुझे अच्छे से याद है कि नहीं है और इस चक्कर में मैं थोड़ा सा लेट हो गई। कोई बात नहीं, होता है होता है होता है, सबके साथ ऐसा होता है, कोई गाना उन्हें इतना अच्छा लग जाता है कि वो उसमें डांस करते हैं। मेरे साथ तो ये अक्सर होता है, हर दूसरे गाने पे यही होता है, तभी हमारे जो लिसनर्स हैं वो अक्सर मुझे मैसेज करते हैं कि ये क्या बात हुई कशिश, हर दूसरे गाने को सुन के आप यही बोलती हो कि यार ये गाना तो मेरा फेवरेट है, ये गाना तो मेरा फेवरेट है। वैसे देखिए बहुत सारे गाने जो है आपके फेवरेट हो सकते हैं, लेकिन एक गाना जो है वो आपका ज़रूर फेवरेट होगा एंड वो गाना जो है होगा आशा भोसले जी के आवाज़ में। मतलब आशा भोसले जी इतनी ज़्यादा बेहतरीन सिंगर रहे हैं और उनके गाने इतने ज़्यादा पसंद आते हैं कि आपकी प्लेलिस्ट में एक आशा भोसले सॉन्ग ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब जो बहुत कम गाने भी सुनता है ना उसकी भी प्लेलिस्ट में एक ना एक गाना ऐसा ज़रूर होता है जो आशा भोसले जी की आवाज़ में हो। सो ये बहुत ही बढ़िया वाली बात है और इंटरनेशनली भी जो है आशा भोसले जी ने बहुत सारे गानों में जो है एक्सपेरिमेंट किया है। अब वो कौन कौन से गाने और किस तरीके से है वो मैं आपको बताऊँगी थोड़ी सी देर में, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि रेडियो ऑलिव की टीम और हम आरजेस आपके ऑफिस में आए और आपको बहुत सारे फन फॉलिक मस्ती मजा जो है वो कराएं, तो फिर उसके लिए आपको जो है 3311063 पर HL लिखकर जो है अपना नाम लिखना है एंड हमारी जो टीम है वो हैप्पीनेस लाउंज लेकर आपके पास आ जाएगी, जहां पर हम बहुत सारे गेम्स खिलाते हैं, क्विज खेलते हैं, फन होता है एंड बहुत मज़ा आता है एंड आपकी जो टीम है उसे रिजुविनेट होने का एंड रिवाइव होने का बहुत ही बढ़िया टाइम जो है मिलेगा, मौका मिलेगा। सो क्यों ना अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और एक मैनेजर हैं तो एक बार रेडियो ऑलिव की टीम को अपने ऑफिस में बुलाया जाए, तो जल्दी से रजिस्टर करो, हमारी टीम की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा 3311063 पर HL लिखकर अपना नाम लिख दो हैप्पीनेस लाउंज के लिए, अपनी कंपनी को अपने ऑफिस को जो है रजिस्टर कर दो। फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: यार देखो आज कल जो है सारी चीजें लेस इंस्टाग्राम दिस मोमेंट के बारे में ही तो होती हैं. मतलब कोई मोमेंट हो या ना हो उसे इंस्टाग्राम सबसे पहले कर दिया जाता है. एंड कई बार तो मोमेंट ही इसीलिए क्रिएट किया जाता है ताकि जो है उसे इंस्टाग्राम पे डाला जा सके. काफ़ी सारे प्रपोजल वीडियोस जो है वो मेरी फीड पे आ जाते हैं, पता नहीं क्यों आ जाते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम जो है पता नहीं क्यों ऐसा दिखाना चाहता है कि यार तुम प्रपोजल वीडियो देखो, देखो कितने अच्छे से प्रपोज कर रहे हैं लड़के. एंड ये जो प्रपोजल वीडियो है ये बाद में पता चलता है कि ये जो था ये ऑलरेडी प्लान्ड था. जो असली प्रपोजल था वो तो हो चुका था लेकिन बेचारी लड़की जो है वो तैयार नहीं थी, उसने अच्छे एक्सप्रेशन नहीं दिए, तो फिर फोटो के लिए रील के लिए वापस ये प्रपोजल हुआ है. एंड अभी जो है एक प्रपोजल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें एक कैसे बताऊँ मैं, एयर बलून है उसमें से लड़का गिर रहा है एंड लड़की ने उसे पकड़ा हुआ है एंड वो बहुत परेशान है एंड लड़की का हाथ छूट जाता है एंड वो चिल्ला देती है एंड फिर पता चलता है कि लड़का पैराशूट खोलता है और उस पर लिखा होता है मैरी मी. यार इस चक्कर में ये शौक देने की क्या ज़रूरत थी. और मतलब आप लड़के जो है आप एक पन्ने पे लिख कर देंगे, एक स्टिकी नोट पर भी लिख के मैरी मी देंगे तो लड़कियां मान जाएंगी, लेकिन इतना रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. मतलब लड़के बहुत अलग टाइप के हो रहे हैं यार आजकल. मतलब कुछ एफर्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा कर देंगे, कुछ एफर्ट नहीं करेंगे तो बिल्कुल एफर्ट नहीं करेंगे. मतलब एफर्ट करने वाले इतना ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं कि आप बस थोड़ा सा ओह कर दो ये आपके लिए जो है हर चीज़ कर देंगे, और कुछ है जो एफर्ट नहीं करने कि आप रो रो के थक जाओ, उनको बता बता के थक जाओ, प्रिस्क्रिप्शन लिख दो लेकिन एक एक गर्म पानी का जो है ग्लास आपको लाके नहीं देंगे. ये होता है, पता नहीं क्या हो रहा है. खैर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड वो मैं आपको बताऊंगी थोड़ी सी देर बाद. लेकिन उससे पहले जो है एक कूल सॉन्ग ऑफ द आवर जो है वो इन्जॉय करना चाहिए आपको. सो वॉल्यूम बढ़ाकर ये गाना इन्जॉय कीजिए. बाकी अगर वो प्रपोजल वाली वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो यार इंस्टाग्राम पे क्या कर रहे हो, जाकर देखो जल्दी से. एंड फिलहाल जो है कूल सॉन्ग ऑफ द आवर इन्जॉय करो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो सी यू बिंदास.
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है.
1: 1940s की सादगी से लेकर 70s के रेट्रो रेवोल्यूशन तक, मॉडर्न पॉप सॉन्ग्स के स्वैग से हिंदी सिनेमा के कल्ट क्लासिक्स तक, वक्त बदलता रहा पर एक आवाज हमेशा सबसे आगे रही. जवान जाने मन आशाताई की. आज आशा भोसले जी की बर्थ एनिवर्सरी पर सुनिए उनके सुपरहिट गाने ओनली ऑन रेडियो ओलिव.

0: Ready?
1: Ready!
0: To learn!
1: Yes!
0: To play!
1: Absolutely!
0: To grow!
1: With Maserati!
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसेराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
1: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
2: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसेराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
3: बातें नहीं एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
6: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

यार देखिए, पहली बार देखने पे ही मोहब्बत हो गई, ये कैसी बात कर दी यार आपने, इतना तो नहीं हो रहा है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिफर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखी है। अब देखो यार, मैंने जैसे आपसे प्रॉमिस किया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, सो वो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि अब जितने भी लोग एम्प्लॉयज़ जो है वो काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर्स के द्वारा यानी एम्प्लॉयज़ को जो है उनकी मंथली वेजेस, ईयरली वेजेस, वीकली वेजेस जो भी उन्हें मिलती है वो टाइम पर मिलनी चाहिए, यानी ड्यू डेट से ज़्यादा आगे पीछे जो है नहीं हो सकता है, जो ड्यू मंथ की पहली जो डेट है उस पर उन्हें वेजेस मिलनी ही चाहिए, वरना जो है अच्छी सी कार्रवाई जो है वो हो सकती है एम्प्लॉयर के खिलाफ। अब ये वाली खबर आप तक तो पहुंच ही गई होगी, और अगर आपको ऐसा आपके साथ कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो आप ये वाली खबर जो है अपने एम्प्लॉयर तक भी जल्दी से पहुंचा दीजिए, ताकि उन्हें जो है रिपरकशंस ना सहने पड़े। मैं हूँ आपकी कशिश, फिलहाल रिश्ते नाते गाना जो है आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर दे दनादन मूवी से। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है, जब मुझे दिमाग नहीं लगाना होता ना ज़्यादा तो मैं ये मूवी देख लेती हूँ। सो ये गाना इन्जॉय कीजिए फुल वॉल्यूम में राहत फतेह अली खान जी की आवाज़ में। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: मैं हूँ सारिका
1: सारिका
0: आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3
2: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क

ट्रैक आपने किया हुआ चाओ, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग। अब देखिए यार, मेरे यहाँ से जाने का वक्त आ गया, आपको चाचा बाय बाय करने का वक्त आ गया है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जाते जाते वही कहूँगी जो हर रोज़ कहती हूँ कि गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाइए, खाना खाते रहिए, पानी पीते रहिए, एंड अगर दोपहर में बाहर निकलें तो सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बाहर ना भी निकले तो भी लगा लेनी चाहिए सनस्क्रीन, अच्छी ही बात है, यूवी रेस से जो है प्रोटेक्शन हो जाती है। और जब तक हम कतर की यू नो वो बेस्ट वाइब में वापस नहीं आ जाते, अभी भी काफ़ी अच्छी वाइब है, लेकिन बेस्ट वाइब वो जो होती है ना जिसमें थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी सर्दी होती है, उसमें नहीं पहुंच जाते, तब तक तो सनस्क्रीन लगाओ, सोते हुए जा रहे हो तो भी लगाओ। मैं चलती हूँ अभी, आप जो है ओनली फर्स्ट सॉन्ग ऑफ द आवर जो है वो इंजॉय कीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल गाना है मिर्जापुर से, इंजॉय कीजिए वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जियो मिंदास, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।

from vacation in your hometown. तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं. अब कतर में shopping करें best prices पर. सिर्फ Nesto Hypermarket में. Groceries हो, fresh food हो या daily essentials. सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर. तो अपनी shopping को बनाएं और भी profitable. Nesto Hypermarket, 152nd branch now open in Old Passport Office, Algara.

0: ये है मिडनाइट लाउंज।
1: बैक फ्रॉम वेकेशन इन योर होम टाउन, तो रूटीन स्टार्ट करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब कतर में शॉपिंग करें बेस्ट प्राइसेस पर, सिर्फ नेस्टो हाइपरमार्केट में। ग्रोसरीज हो, फ्रेश फूड हो या डेली एसेंशियल्स, सब कुछ एक ही जगह अमेजिंग प्राइसेस पर। तो अपनी शॉपिंग को बनाए और भी प्रॉफिटेबल। नेस्टो हाइपरमार्केट, 152nd ब्रांच, नाउ ओपन इन ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, अलगराफा।
2: You are listening to Qatar's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindaas.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: ये है मिडनाइट लव।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: ये है मिडनाइट लाउंज.
0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM. जियो बिंदास.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Jiya bindaas,
1: ye hai midnight love.
2: ये है midnight

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: बिंदास ये है मिडनाइट लाउंज,
2: ये है मिडनाइट लाउंज.
3: From vacation in your hometown, तो routine start करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं. अब कतर में shopping करें best prices पर. सिर्फ Nesto Hypermarket में. Groceries हो, fresh food हो या daily essentials, सब कुछ एक ही जगह amazing prices पर. तो अपनी shopping को बनाए और भी profitable. Nesto Hypermarket, 152nd branch now open in Old Passport Office, Algarafa.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: ये है मिडनाइट लव।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट।

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3 FM.

0: खत्म।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदा